सुप्रभातम, हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवमी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026 सुबह के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। खेत खलिहान कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है अमरूद के बाग लगाएं, इस विषय पर वार्ता जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख फलों के में अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें विपरीत दशाओं के प्रति काफी हद तक सहिष्णुता पाई जाती है। यह दूसरे फल वृक्षों की अपेक्षा अधिक गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अपनी लोकप्रियता और अनुकूलता के कारण इसकी बागवानी पूरे भारत में की जाती है। अमरूद के पौधों में सुंदर एवं मजबूत ढांचा देने के लिए 2 से 3 वर्ष तक कटाई छटाई की जाती है। ढांचा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर तक मुख्य तने पर कोई शाखा न हो। इसी ऊंचाई पर मुख्य तने से 3-4 शाखाओं को चारों तरफ समान रूप से निकलने देना चाहिए। तदुपरांत पौधे के आकार को नियमित रखने एवं अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर आवश्यक काट छाट करते रहना चाहिए। कटाई छटाई मार्च से जून तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। अमरूद के छोटे पौधों को नियमित रूप से सिंचाई देते रहना चाहिए जिससे पेड़ की जड़ क्षेत्र नम बना रहे। सर्दियों में 20 से 25 दिन तथा गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर थाला विधि से सिंचाई करते रहने से पौधों का विकास अच्छा होता है। सिंचाई के बाद समय समय पर गुड़ाई एवं घास निकालते रहना चाहिए। फल लगने वाले पौधों में फूल के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें। ऐसा करने से फूल गिर जाएगा एवं फल कम लगेंगे। खरपतवार निकालते समय गुड़ाई कम करना चाहिए क्योंकि अमरूद की जड़ें ऊपरी सतह पर ही होती हैं। प्रारंभ के 2-3 वर्षों में बाग के रिक्त जगहों पर कुछ सब्जी वाली फसलें जैसे मटर, गोभी, ग्वार, लोबिया आदि उगाई जा सकती है। जब फल मिलने आरम्भ हो जाए तो अंतः सस्यन नहीं करना चाहिए। नए बागों में रबी में गोभी, मटर, फ्रेंच बीन और मेथी, खरीफ में लोबिया, ग्वार, उर्द और मूंग तथा जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती हो और भूमि क्षरण यानी कि कटाव की समस्या हो वहां बरसात में भूर संरक्षी फसलें जैसे लोबिया, ग्वार, सनई, ढैंचा आदि को बाग के खाली जगहों में लगाना चाहिए। अंतः सस्यन करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतः फसलें कम बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसल लगाते समय कम से कम 1 मीटर जमीन पेड़ के चारों तरफ छोड़ देनी चाहिए। इन फसलों की सिंचाई की आवश्यकता मुख्य फसल जैसी होनी चाहिए। ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए जो भूमि से बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व लेते हों। गन्ना, अरहर, मक्का, ज्वार आदि फसलें बाग में नहीं लगानी चाहिए। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देना आवश्यक होता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा को 2 भागों में बांटकर पहला भाग जून जुलाई में और
2: आज मकर संक्रांति है। सूर्य जब

श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश ये वार्ता हम आपको पूरी तरह नहीं सुनवा पाए। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए आज का चिंतन मनन।
3: पीवी नरसिम्हा राव। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का नाम महान नेताओं में सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व किया जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, बुद्धिमता और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर भारत को विकास की नई दिशा दी, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकारों में गिना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पालुमपरती वेंकट नरसिम्हा राव था। उनका जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान में तेलंगाना राज्य के वंगारा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी और अध्ययनशील थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और उर्दू सहित अनेक भाषाओं में उनकी पकड़ काफी अच्छी थी। इसी कारण से वे एक विद्वान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और राजनीति में इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार में विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के दायित्व उन्होंने बखूबी निभाया और अपना उन पर विशेष प्रभाव भी छोड़ा। सन 1991 में भारत आर्थिक संकट के कठिन दौर से गुजर रहा था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आ गई थी, तो ऐसे समय में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से आर्थिक सुधारों एवं नीतियों के माध्यम से भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान की। राजनीति के साथ साथ नरसिम्हा राव साहित्य और संस्कृति में भी काफी रुचि रखते थे। वे एक अच्छे लेखक थे और उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। उनका प्रसिद्ध उपन्यास द इनसाइडर भारतीय राजनीति की अनेक झलकियां प्रस्तुत करता है। वे भारतीय संस्कृति के गहरे जानकार थे और परंपरा तथा आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने में विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व शांत, गंभीर और विचारशील था। वे कम बोलते थे, लेकिन उनके निर्णय देश के भविष्य को प्रभावित करने वाले होते थे। आर्थिक उदारीकरण के बारे में उनका मानना था कि भारत को वैश्विक मंच पर टिकना है तो पुरानी और कठोर नीतियों को बदलना होगा। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी, आयात शुल्क घटाया और भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाया। शीत युद्ध के बाद के बदलते वैश्विक परिदृश्य में राव ने भारत के रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी का सूत्रपात किया। उनका स्पष्ट चिंतन था कि किसी भी देश का भविष्य वहां के मानव संसाधन पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता के तहत उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने वाली नीतियों का नेतृत्व किया। उनके चिंतन में सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा से शामिल रहा। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उन्होंने स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया। उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में जाना जाता है जो कठिन राजनीतिक चुनौतियों का समाधान बहुत धैर्य और बौद्धिक गहराई के साथ निकालते थे। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और समझदारी से देश का नेतृत्व किया। इसी कारण उन्हें मौनी मुनि भी कहा जाता था। 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया। उनके जाने से देश ने एक महान नेता और दूरदर्शी चिंतक खो दिया। भारत के लिए उनके योगदान और समर्पण को सदैव याद रखा जाएगा। वर्ष 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव का जीवन हमें सदैव कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। भारतीय इतिहास में उनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा।
2: ये था आज का चिंतन मनन। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। वंदना में निवेदित हैं कुछ भक्ति रचनाएं। आरंभ में ये देश वंदना।

जी हाँ साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यत्राणि रूढानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर सभी प्राणियों को भ्रमण कराता रहता है। इसी सत्य को कालांतर में कबीर दास ने भी कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया बूझत नाहीं।

0: जी हाँ दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति ईश्वर की चाह में दौड़ता रहता है। जीवन भर वह सुखी रहना चाहता है और इसीलिए ईश्वर की चाह में यत्र तत्र सर्वत्र घूमता रहता है। मृग मरीचिका की भांति वह सिर्फ भटकता रहता है। ईश्वर की चाह ऐसी प्रबल होती है कि कभी कभी यह सुख दुख का कारण बनने लगता है। जबकि ईश्वर हमारे अंदर स्थित हैं, हर प्राणियों में स्थित हैं, सर्वत्र स्थित हैं। सुख दुख में कब बदल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। जो सुख के क्षण उसके करीब होते हैं वह उसे भी अनुभव नहीं कर पाता और बड़ी खुशी की लालसा में वह भटकता रहता है। जबकि सत्य यह है कि हमारे अंदर ही परमात्मा का निवास है। गीता में ही कहा गया है, सो अहम अर्थात मैं वह हूँ। हमारे अंदर ही पर ब्रह्म परमात्मा का निवास है। दिल में है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाई देख ली। अर्थात प्रभु को जब हम अनुभव करते हैं अपने सर्वत्र, तो वह हमारे रोम रोम से प्रस्फुटित होते हैं और तब हम धन्य होते हैं उन्हें पाकर।
1: तत्सत का अर्थ है हरिओम ही सच्चा है, सत्य ही ईश्वर, न जाने कहाँ विलीन होगा।

सुख की चाह में दुख की राह का पथिक बनना कहाँ तक उचित है दोस्तों? हम सब सोचते हैं कि भौतिक संसाधन ही सुख का कारण है और उनसे हम सुखी रह जाएंगे, किंतु यह सत्य कहाँ है? संसाधन की अधिकता ही सुख का कारण हो, यह बिल्कुल ही असत्य है। वास्तविक सुख हमारे भीतर छिपा हुआ है। हृदय का आनंद ही वास्तविक सुख है। उस सुख की खोज में हमें स्वयं ही निकलना होगा और खोजना होगा। ये सुख हमें कहाँ मिलेगा? पक्षियों के कलरव में, फूलों की क्यारियों में घूमते हुए, बच्चों की तोतली बोली में, ये सुख है, ये आनंद है। ये आनंद है हमें दूसरों के दुखों में या वक्त आने पर उसके काम आने में। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी संसाधन कहाँ जुटाए? बड़े महल और अट्टालिकाएँ भी नहीं बनाई। वे झोपड़ी में रहकर भी कितने संतुष्ट थे। यही संतुष्टि उनके सुख का कारण था। जितना हम आवश्यकताओं एवं अभिलाषाओं का विस्तार करते जाएंगे दोस्तों, उतना ही हम दुख के निकट होते चले जाएंगे, क्योंकि सुख के ये संसाधन एक सफ़ेद हाथी की तरह होते हैं, जो जिसकी मांग कभी ख़त्म नहीं होती। एक संसाधन जुटाने के बाद हम दूसरे संसाधन के लिए बेचैन हो उठते हैं। हमारे अंदर की तृप्ति कहीं न कहीं तिरोहित हो जाती है। सुखी होने के कई कारण होते हैं दोस्तों। दूसरों को खुश देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर, दूसरों की प्रशंसा करके भी सुखी हुआ जा सकता है। मन के अंदर अगर हम आनंद की अनुभूति करेंगे, अगर हम अपने भीतर संगीत की अनुभूति करेंगे, तो फिर ये आनंद, ये सुख हमें हर पल मिलता रहेगा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। साथियों, वंदना में आज आपने जिन कलाकारों को सुना वे थे सुरेश वाडकर, अनुराधा पोडवाल, अनूप जलोटा और साथी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह से ली गई भेंट वार्ता। विषय है महिलाओं में अस्थि रोग।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले अस्थि रोगों के बारे में और हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और उपचार। शहर के जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अस्थि रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में अस्थि रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं?
2: महिलाओं में अस्थि रोग ज्यादातर जिस समय महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उस समय कैल्शियम जो कि बहुत जरूरी होता है, बच्चे को कैल्शियम चाहिए और उस समय अगर प्रॉपर अमाउंट में उसको कैल्शियम या विटामिन्स नहीं मिलेगा तो उसमें एक बीमारी होता है ऑस्टियोमलेशिया।
1: जी,
2: ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि हड्डी कमजोर हो जाता है और उसको हमेशा जो है समूचे शरीर में दर्द करेगा, दर्द से पीड़ित, जिसको कि देहात में लोग बोलते हैं टटोनी हो रहा है।
1: अच्छा, ये गर्भावस्था के दौरान होता है या बाद में भी होता है?
2: ये गर्भावस्था में ज्यादातर उस समय होता है
1: जी,
2: ऑस्टियोमलेशिया। जो उसके बाद भी बच्चा जब जन्म ले लेता है
1: जी,
2: जब दूध पीता है तो उस कंडीशन में भी उसको अगर प्रॉपर अमाउंट में दूध नहीं मिले या अलग से कैल्शियम विटामिन्स नहीं मिले
1: जी,
2: तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम उसके हड्डी से बाहर निकलता है
1: जी,
2: और दूध के द्वारा वो बच्चे को मिलता है।
1: अच्छा,
2: अगर सप्लीमेंट उसको नहीं मिलेगा तो वो उसकी भी हड्डी कमजोर हो जाएगी, उस कंडीशन में भी उसको समूचा बदन हाथ में दर्द करेगा
1: जी।
2: प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम नहीं मिलने से क्या होगा, उससे बच्चा भी कमजोर होगा
1: जी,
2: बच्चा के ग्रोथ पर भी उस असर पड़ता है
1: जी। जी, तो डॉक्टर साहब, और कौन कौन से रोग महिलाओं में हो सकते हैं?
2: महिलाओं में एक और बीमारी जो है वही ऑस्टियोपोरोसिस। जब माहवारी रुक जाती है
1: जी,
2: माहवारी रुकने के बाद जो है एस्ट्रोजन लेवल यूजुअली 50 साल में बंद होता है, एस्ट्रोजन लेवल जो है घट जाता है। एस्ट्रोजन लेवल घटने से क्या होता है कि इसका काम है हड्डी में कैल्शियम को जमा करना
1: जी,
2: तो ये जब एस्ट्रोजन नहीं मिलता है वो कैल्शियम जो है डिपॉजिट नहीं होता है और कैल्शियम उसकी हड्डी से बाहर निकलते जाता है, इसके चलते उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है और वो हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए महिलाओं में देखा गया है कि 50 से 70 साल के बीच में बहुत तेजी के साथ कैल्शियम निकलता है और उसमें हड्डी भी टूटता है बहुत ज़्यादा
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जब महिलाओं की हड्डियाँ जब कमज़ोर होने लगे तो शुरुआती दौर में, तो क्या कोई लक्षण ऐसे उन्हें महसूस होते हैं जिससे कि वो आगे अपना उपचार करवा सके?
2: हाँ, कैल्शियम अगर कम हो जाएगा
1: जी
2: तो उस समूचे बदन हाथ में उसको हमेशा दर्द करेगा।
1: अच्छा,
2: वो बार बार कहेगा कि हमको मालिश करो
1: जी,
2: मसल का स्पाज्म होता है जिसके चलते पैर हाथ जो है खींचने लगता है, नस का खिंचाव होता है और उसी से वो ज़्यादातर परेशान रहती है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, इन लक्षणों के आधार पर क्या दवाइयों के द्वारा इसका उपचार संभव है?
2: हाँ, इन लक्षणों के द्वारा जो है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में वो तो कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट प्रॉपर अमाउंट में दिया जाए तो इसका उपचार संभव है
1: जी।
2: जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है 50 साल के बाद, उस कंडीशन में एस्ट्रोजन का जो है अलग से सप्लीमेंट दिया जाता है, हॉर्मोन्स का
1: जी,
2: उससे क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसका कम होगा और वो जो टूटने वाली परेशानी है वो कम हो जाएगी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं का खान पान कैसा हो शुरू से ही, जो कि आगे चल के उन्हें अस्थियों के रोग का सामना ना करना पड़े।
2: महिलाओं के खान पान में दूध तो बहुत ज़रूरी है
1: जी,
2: उसके साथ विटामिन्स जो है वो हरी सब्जियों में मिलता है, हरी सब्जी खाएं, दूध खाएं, थोड़ा धूप का भी सेवन करें, उससे विटामिन डी मिलेगा। इससे क्या होगा कि उनके शरीर में जो कैल्शियम की कमी के चलते प्रभाव पड़ता है वो नहीं होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिल करके प्रॉपर अमाउंट में उसका, अगर दूध नहीं मिलता है तो कैल्शियम सप्लीमेंट मिलता है, कैल्शियम ज़रूर खाना चाहिए, विटामिन्स भी खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना, प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन भी मिलना चाहिए
1: जी। तो डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि महिलाओं के अस्थि रोग के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका उपचार कैसे किया जाए। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: महिलाओं में अस्थि रोग, स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रहे थे सचिन कुमार, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी का प्रसारण। गायक कलाकार हैं श्रीकांत परगांवकर और साथी।

श्रीकांत परगांवकर और साथी से अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। संगीत रचनाकार थे सतीश भाटिया। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। कार्यक्रम विवरण इसमें सुनिए, आज यानी 30 जून दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। दिन के 3:25 से शाम के 5 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण। इस कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचाएंगे दिल्ली केंद्र के सौजन्य से। प्रातः 7 रोज की तरह पेश होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, इसमें रोज की तरह आप सुनेंगे रेल सूचना, मौसम सूचना, आज का इतिहास अखबारों के पन्नों से। साथ ही 7:20 पर आज मंगलवार है और आज के दिन आप सुनते हैं स्मृति संवाद। इसमें आज आप सुनेंगे बाबूलाल हरिजन से ली गई भेंट वार्ता। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में प्रातः 7 बजे रसरंग के चंक में आज के कलाकार होंगे डॉक्टर अजय राय। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दिन के 3 बजे तरंग में आज के कलाकार होंगे श्यामानंद झा। देशभक्ति गीत का प्रसारण होता है प्रतिदिन हमारे केंद्र से दोपहर बाद 3:20 पर। संध्या 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी के आज के कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। प्रातः 9:30 पर आज पेशे खदमत होगा बज़्मे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। आज इस कार्यक्रम में स्टूडियो मुशायरा पेश होगा, शायर होंगे मोहम्मद हारून रसीद, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद जौसर अली, मोहम्मद इब्राल आलम। इसके अलावा एक मकाला सुनिएगा डिप्टी नज़ीर अहमद के नॉवेल में निस्वानी किरदार, मकाला निगार होंगे मोहम्मद परवेज। दिन के 12 बजे बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम पेश होगा उमंग। दिन के 1:30 पर धारावाहिक गंगा के सुरताल की अगली कड़ी का प्रसारण होगा, लेखक होंगे अशोक अंचल, प्रस्तुतकर्ता होंगे दासमती छत्तर और अशोक शरण। संध्या 5 बजे युवा साथी अपना प्रिय कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वारिस हुसैन की वार्ता, विषय होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैविक विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य। रात्रि 9:30 पर नाटक अकल का ताला प्रस्तुत किया जाएगा, लेखक होंगे महेंद्र मयंक और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता होंगे शंकर राम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज प्रातः 10:30 पर आज आप सुनेंगे सृष्टि सुमन के गाए कुछ लोकगीत। दिन के 1 बजे और 1:20 पर लोकरंग की के आज के कलाकार होंगे राजेश पंडित। और साथियों फिल्मी गानों के साथ आज हम आपकी सेवा में रहेंगे कुछ इस तरह, प्रातः 7:30 पर और शाम के 5:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। प्रातः 9:06 पर पेशे खदमत होगा फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम नगमे नए पुराने। प्रातः 11 बजे लुत्फ उठाइएगा नए तरानों का, 11:30 पर विशेष फिल्मी गानों का गुलदस्ता सजेगा। दिन के 2:30 आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का, रात्रि 8 बजे अपनी खुशबू लेकर आएगी रजनीकंधा। और रात 10:30 पर भाव पर आधारित फिल्मी गाने सुनिएगा भाव गीत। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार दिल्ली से।

श्रोताओ नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम सुप्रभातम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार विक्रमशिला, साथ ही जोहार भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त संगीता। इस मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, इस्तकबाल है, इस्तकबाल है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम और आप रहेंगे साथ साथ दूर तलक और देर तलक। साथ ही इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे ढेर सारी जानकारियाँ, मौसम सूचना, रेलगाड़ियों के आवागमन की सूचना, आज का इतिहास क्या कहता है और आज न्यूज हेडलाइंस क्या क्या हैं। साथ ही 7:20 पर हम लाते हैं किसी अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व से बातचीत का कार्यक्रम स्मृति संवाद। साथ ही दोस्तों आपका मनोरंजन हम करेंगे सुगम संगीत और फिल्म संगीत के साथ। लेकिन कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम का एक अच्छे से सुविचार से। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जी हाँ साथियों, इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई आपका फिक्र करने वाला है तो बेशक आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके गिरने पर आपको संभाल लेगा, ना कि तालियां बजाएगा। ऐसे फिक्र करने वालों को हमें हमेशा कृतज्ञ भाव से देखना चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी कभी हम झुंझला जाते हैं और लगता है कि कोई बेवजह हमारे जीवन में दखल दे रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं जो किसी भी संकट की घड़ी में आगे बढ़ कर के कहे मैं हूँ ना। तो ऐसे फिक्र करने वाले अगर आपके जीवन में हैं तो आपको हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए और आपको भी अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आप पर आँख मूंद कर भरोसा करें कि अगर कोई नहीं है तो आप उसके लिए हमेशा खड़े हैं। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम को शुरू करते हैं सुगम संगीत के इस मधुरम भक्ति गीत से। दोस्तों आज के इतिहास में हम बताएंगे, आज सोशल मीडिया डे है और ये सोशल मीडिया टोटल तकनीक पर आधारित है। दोस्तों देखिए ना, हम भी इसी तकनीक के वशीभूत हैं और ये तकनीक थोड़ा सा धोखा दे रहा है और लग रहा है कि ये सुगम संगीत का चंक जो है हम आप तक थोड़ा सा विलंब से पहुंचाएंगे। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम आप तक जल्द ही पहुंचाते हैं सुगम संगीत। तब तक आनंद लीजिए इस वाद्य संगीत का।

0: गोपाल सिंह नेपाली की ये गीत रचना आप सुन रहे थे और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार ढेर सारी बातें हैं और ढेर सारा मनोरंजन है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और दोस्तों इस कार्यक्रम में हम और आप करेंगे ढेर सारी बातें और ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी होगा दोस्तों। तो अब थोड़ा सा इतिहास आज का क्या कहता है इस पर नज़र डाल लेते हैं साथियों। आज के दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1908 में तुंगुस्का घटना के बाद इसे आज मनाया जाता है क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से आने वाले खतरों और क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों आज विश्व सोशल मीडिया दिवस भी है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2010 में मैशेबल द्वारा की गई थी। यह दिन हमारे दैनिक जीवन, संचार और वैश्विक कनेक्टिविटी पर आधारित है और सोशल मीडिया के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको पहचानने और इसके चलते हमारे जीवन में क्या क्या आसानियां हुई हैं, क्या क्या हम इससे सुविधा उठाते हैं उसको, उसके लिए जश्न मनाने का दिन है और उसी के लिए ये समर्पित दिन है दोस्तों। और साथ ही आज के दिन कांगो स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही भी मनाया जाता है। कांगो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसने 30 जून 1960 को बेल्जियम से अपनी आज़ादी हासिल की थी। तो दोस्तों और भी ढेर सारी बातें हैं लेकिन अब समय हो चला है कि हम जाने आज के एक महान व्यक्तित्व से, अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व से ली गई भेंट वार्ता आज मंगलवार के दिन आप तक पहुंचती है। और आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं बाबूलाल हरिजन से ली गई भेंट वार्ता। आपसे बात कर रहे हैं कुसुमाकर दुबे।
4: श्रोताओं नमस्कार। स्मृति लेख कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बाबूलाल हरिजन। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है बाबूलाल। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अवकाश कब ग्रहण किया?
5: 2008 को।
4: 2008?
5: हाँ।
4: यानी कि 2008 से 7 साल बीत चुके हैं।
5: बीत चुके।
4: तो आपकी उम्र लगभग
5: 67 वर्ष।
4: कहाँ के रहने वाले हैं बाबूलाल जी?
5: ग्राम तिलकपुर रजौन बका।
4: तो आपने जो सेवा की शुरुआत वो कब की थी?
5: 1971 में।
4: जी, 71 से आप नौकरी कर रहे हैं
5: जी।
4: और 2008 तक आपने की, मतलब
5: 37 वर्ष सेवा की है।
4: पेंशन तो पूरा मिलता होगा?
5: पेंशन 25,000 मिल रहा है।
4: हाँ, मतलब फुल पेंशन।
5: फुल पेंशन
4: जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई थी?
5: बीए पास है।
4: बीए आपने नौकरी में आने के बाद पास किया कि पहले कर लिया?
5: नहीं, पहले इंटर पास किए हुए थे, नौकरी में प्राइवेट से बीए पास।
4: प्राइमरी स्कूल में रहे?
5: प्राइमरी स्कूल में रहे पहले।
4: कहाँ कहाँ रहे बताइए?
5: प्राइमरी स्कूल में पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनगंज, उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय दासपुर शाहकुंड, उसके बाद 2/10/80 में हाई स्कूल सरकारीकरण हुआ तो 81 की वैकेंसी में हम हाई स्कूल चलाए हिंदी विषय में।
4: हाई स्कूल में हिंदी पढ़ाते?
5: हाँ, हिंदी पढ़ाते।
4: और उसके बाद आपने 37 वर्षों की सेवा में जब से आपने शुरुआत की और जब आपने नौकरी छोड़ी तो आपने क्या महसूस किया? वो पढ़ाई लिखाई

0: कैसी हुआ करती थी पहले और बाद में कैसी है?
1: हाँ। जब प्राथमिक विद्यालय में था तो उस समय उस गांव में जिस गांव में थे उस गांव में घर घर जाकर के बच्चों को बुलाते और मेरा टाइम कल्चर और ड्यूटी कल्चर में किसी तरह की खोटने आई और फिर समाज वाले भी अच्छे सम्मान देते थे और किसी के दरवाजे पर रहते थे हम और पढ़ाते थे, लेकिन खाना पीना उनके यहाँ नहीं होता था
0: जी।
1: सिर्फ रहना होता था उनके यहाँ
0: जी।
1: खाना पीना हम अपनी मेरी अपनी व्यवस्था थी।
0: अच्छा।
1: और जब तक प्राइमरी स्कूल में रहे हम पढ़ते रहे लगातार और बीए पास किए उसके बाद हाई स्कूल चले आए।
0: तो बच्चे जब पढ़ते थे पहले 71-72 में और आज भी जब आप नौकरी से हो गई नौकरी आपकी पूरी, तो बच्चों के पढ़ने की प्रवृत्ति में क्या फर्क आपको महसूस हुआ? पहले बच्चे ज्यादा मेहनत करते थे कि अब करते हैं?
1: मेहनत तो पहले भी बच्चे ज्यादा करते थे और पहले बच्चे लगनशील थे
0: जी
1: और शिक्षकों की बात अधिक मानते थे
0: जी,
1: पढ़ाई में ध्यान देते थे
0: जी,
1: और अभी की स्थिति तो कुछ और है
0: जी।
1: अभी बच्चे ज्यादातर गपशप में ही समय बिताते हैं और बहुत सारी बातें दिमाग में भरकर पहले से ही आते हैं।
0: अच्छा।
1: और शिक्षक की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी
0: जी।
1: हम जिस समय हम रिटायर किए उस समय तक तो शिक्षा की वह व्यवस्था थी, टीचर की बात लोग मानते थे, हम जहाँ जहाँ रहे वहाँ ठीक ढंग से ही देखे बच्चे। सबसे पहले मेरी बहाली हुई थी उच्च विद्यालय अफजलपुर नाला प्रखंड दुमका, वहाँ से हम सामंजस कराए RBRHS पथरा बाराहट बाका
0: जी।
1: फिर सितंबर 1995 तक हम रहे बाराहट पथरा में, हमारी बदली हो गई NKHS झंडापुर बीहपुर
0: जी।
1: तो 8 साल तक बीहपुर में झंडापुर में रहे हम और वह एक अच्छा विद्यालय है, राजश्री विद्यालय है
0: जी।
1: और फिर मेरी बदली 2003 में हो गई मूल विद्यालय में
0: जी।
1: मूल विद्यालय से फिर हमारी बदली हो गई पंजवारा
0: जी।
1: लेकिन उस पंजवारा के समय मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी
0: जी।
1: तो RDD से विलय किए तो उन्हें जो उस विद्यालय में रख दिए और वही से मैं रिटायर कर गया हूँ 2008 में
0: जी। अभी अवकाश प्राप्ति के बाद का आपका समय कैसे बीतता है, क्या क्या करते हैं? सुबह उठते हैं तो
1: सवेरे उठते हैं तो अपना दैनिक कार्य जो है दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर हम कुछ बागवानी लगाते हैं, उसमें टहलते हैं, कुछ अपने से करते हैं और कुछ बच्चे गाँव के आ जाते हैं सीखने के लिए, उसको 1-1.5 घंटा समय देते हैं।
0: अच्छा।
1: और जब हमारी इच्छा हो जाती है
0: जी।
1: कि कहीं पढ़ावा जाके तो पास पड़ोस के विद्यालय चला जाता हूँ, वहाँ के हेडमास्टर साहब अगर हमको परमिशन देते हैं तो क्लास कर लेते हैं
0: जी। अच्छा। तो ऐसा आप अभी भी मतलब निशुल्क रूप से कर लेते हैं, आपको ये जरूरी नहीं कि पैसा मिले?
1: नहीं, पर ये ऐसी कोई बात
0: बस
1: नहीं है,
0: पढ़ाने की इच्छा,
1: इच्छा है, पढ़ाने की इच्छा है
0: जी। और गांव में आपका रहना सहना हो रहा है, वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं साथ आपके परिवार में?
1: हमारे परिवार में भी हमारा एक छोटा लड़का है जो लॉ का थ्री सेमेस्टर का लड़का है
0: जी, जी।
1: उसकी शादी करती है पतोहु है
0: जी,
1: उसके दो बच्चे हैं,
0: बच्चे हैं
1: और बड़े बच्चे हमारे भालपुर में अपना मकान है, यहीं रह रहा है,
0: वहाँ रहता है। तो गांव में आपका जीवन बढ़िया से बीत रहा है?
1: हाँ।
0: आप टहलना घूमना तो करते ही हैं?
1: हाँ।
0: स्वास्थ्य
1: ठीक हमारा है,
0: ठीक
1: है। पैर डैमेज है, सिर्फ अर्थराइटिस हो गया है
0: जी जी जी, उसको छोड़ के बाकी सब
1: हाँ सब ठीक है और कोई बीमारी नहीं है, ठीक है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अवकाश ग्रहण करने के बाद जीवन समाप्त हो जाता है कि एक नया जीवन शुरू होता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
1: हमको तो लग रहा है कि अवकाश ग्रहण करने के बाद हम अपने को बेटर अनुभव करते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: और हम स्वतंत्र हो गए हैं
0: जी
1: और हम हर अपने कुटुंब परिवार से आसानी से मिल लेते हैं, उस समय मिलने का समय नहीं था
0: जी जी,
1: और स्वाध्याय भी कुछ अधिक कर लेते हैं उस समय से ज़्यादा
0: जी। आप पढ़ते हैं साहित्यिक किताबें या कुछ और पढ़ते
1: हैं? धर्म की पत्रिकाएं पढ़ते हैं, साहित्यिक पुस्तक पढ़ते हैं
0: जी जी,
1: कुछ रामायण भी पढ़ते हैं।
0: अच्छा, ये सब है।
1: वैदिक पुस्तक भी कुछ पढ़ते हैं
0: जी। और कुछ लेखन का काम भी करते हैं?
1: हाँ, कुछ कुछ कविताएं भी लिखते हैं। ऐसे तो अभी लिखे हुए हैं, दहेज पर एक कविता लिखे हुए हैं। एक आदमी अपनी बेटी की ब्याह की व्यथा कथा सुना रहे हैं
0: जी।
1: दहेज की बात मत पूछो भाई, हो गई बर्बाद जीवन भर की कमाई, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, तन धन देने पर भी समधी को समधी से मेल नहीं।
0: बहुत अच्छा। और
1: दहेज देना एक हस्ती है
0: जी,
1: लेना एक मस्ती है
0: जी,
1: दहेज एक ज्वाला है, जलाती है गांव घर बस्ती।
0: वाह वाह वाह, तो दहेज गांव घर बस्तियां जलाती है। तो दहेज आपके भी पुत्र हैं, आपने दहेज नहीं लिया उन लोगों की शादी में?
1: नहीं, लड़के की शादी में हम बिल्कुल मजदूर घर में बेटी की शादी की है।
0: अच्छा,
1: इसलिए कि हमारी बुढ़ापे की सेवा वह करे।
0: अच्छा, ये सोच के है ना।
1: हाँ,
0: तो आपने दहेज वगैरह नहीं
1: नहीं लिया है?
0: ये आपने ध्यान रखा?
1: ध्यान रखा।
0: आपने जो कविताएं लिखी तो उसका पालन?
1: हाँ, उपहार स्वरूप जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिया और हमने कुछ मांग नहीं किया उसको।
0: नहीं, अच्छी बात है। तो आप गांव में और भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि भाई दहेज वगैरह लेना ठीक?
1: हाँ, संध्या टाइम में हम लोग एक चौपाल पर बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग लोग, और इसकी चर्चाएं होती है कि भाई दहेज तो लेना एक अभिशाप है और देना भी अभिशाप है
0: जी।
1: और दहेज के चलते आज जो है से गांव घर की बेटियां जो है बर्बाद हो रही है, उसके जंदर में भी खतरा पहुंच रहा है
0: जी। तो आप बेटियों की शिक्षा को भी महत्व देते हैं?
1: जी हाँ, मुझे चार लड़की हैं
0: जी।
1: एक लड़की, छोटी लड़की इसी वार्ड में विकास मित्र है।
0: अच्छा जी।
1: और एक बेटी प्रभारी प्रधानाध्यापिका है
0: जी,
1: मध्य विद्यालय।
0: उन लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई की?
1: हाँ,
0: लड़कियों को भी आपने?
1: हाँ,
0: पूरा पढ़ाया।
1: एक बेटी आंगनवाड़ी में है और एक बेटी टेलर का काम करती है।
0: तो
1: सब संपन्न है।
0: चलिए, लड़कियों को आपने अच्छी शिक्षा दी और आप इसके समर्थक भी हैं और आप दहेज के विरोधी हैं। बाबूलाल जी, आपसे बातचीत करके विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, आपने अवकाश प्राप्त व्यक्ति बाबूलाल हरिजन से ली गई ये भेंट वार्ता सुनी स्मृति संवाद में। जी हाँ साथियों, स्मृति संवाद का ये कार्यक्रम हम विशेष कर लाते हैं आपके लिए। मंगलवार के दिन हम ऐसे अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व से के जानकारियों और अनुभवों का लाभ उठाते हैं। और दोस्तों, अवकाश प्राप्त होने के बाद जीवन में एक निराशा घर कर जाती है और ऐसा लगता है जैसे जीवन में बहुत कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इंसान अंदर से जागृत रहे, जीवंत रहे, तो ये अकेलापन कभी नहीं खाता। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है ना, एकला चलो रे। और जब हम अकेले होते हैं दोस्तों, तो सबसे कम अकेले होते हैं। कहते हैं लिस्ट एलोन इज द बेस्ट एलोन, लिस्ट एलोन वाइल ऑल एलोन। तो दोस्तों, अकेलेपन का ये सफ़र अपने साथ अगर हम दोस्ती कर लेते हैं और अपनी धुन में मगन होकर के जीवन गुजारते हैं, तो ये अकेलापन कम पड़ जाता है। और जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है। बागवानी है, जैसा कि हमने इस इंटरव्यू में सुना कि बागवानी है। वह अगर हमने शिक्षा के क्षेत्र से अवकाश प्राप्त किया है तो निःशुल्क शिक्षा भी दे सकते हैं बच्चों को। परिवार में, समाज में, जहाँ भी सुख और दुख का माहौल है, वहाँ जाकर हम अपनी सेवा दे सकते हैं निःशुल्क, ताकि लोगों के सुख दुख के भागी बन सकें। तो इस तरह से अकेलापन खुद ब खुद दूर हो जाता है दोस्तों।

0: जी हाँ दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं तो सबसे कम अकेले होते हैं और अपने मन की हम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप कहीं मत जाइएगा, हमें उम्मीद है कि आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली आ चुकी होगी और अब अखबारों न्यूज़ हेडलाइंस का आप इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बस थोड़ी ही देर में इस ब्रेक के बाद आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ हेडलाइंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो लीजिए सुनिए कुछ ज़रूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
4: जी हाँ दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से इस इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। ये कार्यक्रम आपके लिए रोज सुबह आता है प्रातः 7 बजे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। तो दोस्तों अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस, क्या कहता है आज क्या का अखबार, अखबारों के पन्ने में क्या है, पन्नों में क्या है खास खास। दोस्तों भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विभाग ने बढ़ाया प्रशासनिक ढांचा, 38 नए पद मंजूर किए और हर सदर अनुमंडल में अब 2 DCLR होंगे। जमीन विवाद मापी म्यूटेशन और परिमार्जन मामलों के निपटारे में अब आएगी तेजी। और साथियों IIIT के छात्रों ने जीते 3 पदक। IIIT भागलपुर के NCC कैडेटों ने बरौनी में लगे अखिल भारतीय थल सैनिक चयन कैंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। बिहार झारखंड निदेशालय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर डिवीजन के कैडेट कुमार आदर्श ने हेल्थ एंड हाइजीन की लिखित तथा वक्तृत्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और कंबाइंड सर्विस सब्जेक्ट टेस्ट में रजत पदक जीता। दूसरी मेरिट लिस्ट में से आज नामांकन का अंतिम दिन। दोस्तों TMBU में स्नातक सत्र 2026-30 के प्रथम सेमेस्टर में दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन का मंगलवार को यानी आज अंतिम दिन है। PhD में JRF को प्राथमिकता, इसके बाद नेट वालों को मौका मिलेगा। स्नातक के 4 वर्षीय कोर्स में छात्रों को एग्जिट का विकल्प दिया गया। PG का सिलेबस 20% बदल जाएगा अब। और साथ ही और भी न्यूज है दोस्तों कि सिर्फ MBA नहीं PGDM भी बेहतर विकल्प, समझें करियर के लिए क्या सही। ये बातें कही है देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इन दिनों दाखिले और प्लेसमेंट का जो दौर चल रहा है, कई छात्रों की ग्रेजुएशन भी पूरी ऐसे में पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या करें। तो ये PGDM को एग्जीक्यूटिव MBA की UGC की मान्यता है, ऐसा कहा है एक्सपर्ट ने। मंजूषा और स्क्रीन प्रिंटिंग का मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण, कला एवं संस्कृति विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं की को प्रतिभा निखारने के लिए आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र में युवा अभिव्यक्ति कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय बॉक्सिंग में भागलपुर के लकी ने जीता कांस्य पदक। प्रारंभिक विद्यालयों में कल से पठन पर्व, हर दिन गूंजेगी कहानी हर बच्चे की जुबानी। TMBU के 30 नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा अब लंबित वेतन। IIIT के छात्रों ने जीते 3 पदक। मेरिट लिस्ट से आज नामांकन का अंतिम दिन। और इसके अलावा है कि हूल का भागलपुर कनेक्शन, देवघर और भागलपुर कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर थे आदिवासी। आदिवासियों के शौर्य व ब्रिटिश दमन का गवाह है सिल्क सिटी की ये धरती, ऐसा कहा है पूर्व जनसंपर्क उपनिदेशक एवं इतिहासकार शिवशंकर सिंह ने। महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान का संदेश दिया महिला रंग सखी के सदस्यों ने अब और नहीं का मंचन किया। ये मंचन महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराध, छेड़छाड़, शोषण

था ये सवाल। ये तो थे कुछ आज के मुख्य समाचारों का हेडलाइंस दोस्तों, और आज के दिन के इतिहास के बारे में जानेंगे हम। थोड़ी बातें हमारी हुई थी और बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। तो दोस्तों आज के दिन 30 जून 1938 को पहली बार कॉमिक्स के जरिए सुपरमैन दुनिया के सामने आया था, और आज के दिन किन महान शख्सियतों का जन्म हुआ है उनकी भी बात कर लें दोस्तों। आज ही के दिन प्रोफेसर C.N.R. Rao भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रसायनज्ञ का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सुप्रिया सुले प्रमुख भारतीय राजनेता और लोकसभा सांसद का जन्म हुआ है। अबिका गौर बालिका वधु सीरियल से घर घर में मशहूर हुई लोकप्रिय अभिनेत्री का जन्म आज ही के दिन हुआ है दोस्तों। और आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी के बड़े भाई कल्याण जी का जन्म हुआ है। तो दोस्तों कल्याण जी के बारे में थोड़ी बातें हम कर लेते हैं। संगीत की दुनिया में ये सदा अमर रहेंगे। हिंदी सिनेमा की एक बेहद मशहूर और दिग्गज संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को हम जानते हैं दोस्तों। ये दोनों सगे भाई थे। इनमें से कल्याण जी वीरजी शाह का जन्म 30 जून 1928 को हुआ था, और आपका निधन 24 अगस्त 2000 को हुआ। और आपने अपने छोटे भाई आनंद जी वीरजी शाह के साथ संगीत की दुनिया में अमर पहचान बनाई। दोस्तों बात करें 1908 से 80 के दशक के बीच इन्होंने लगभग 250 फिल्मों में अपना शानदार संगीत दिया था, और विशेष रूप से मारधाड़ स्पेंस और रोमांटिक फिल्मों के सदाबहार गानों के लिए आपको जाना जाता है। प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उपकार, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, सरस्वती चंद्र, सफ़र, जंजीर, कुर्बानी, त्रिशूल आदि उनकी सफल म्यूजिकल फिल्में हैं। और क्लासिक गाने उन्होंने बनाए कस्मे वादे, प्यार वफा, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, छोड़ दो आंचल, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र आदि गाने अमर हैं। तो दोस्तों लीजिए सुनिए। अच्छा इनके बारे में और भी बातें हैं कि दोस्तों इनकी इस जोड़ी को पहचान और सम्मान 1975 में आई फिल्म कोरा कागज़ के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1992 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इन्हीं के फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा जिसमें इन्होंने अपना कालजयी संगीत दिया था।

जी हाँ साथियों, जीवन में अगर प्यार ना हो, मनुहार ना हो, तो जीवन का फलसफा ही अधूरा सा लगता है। हर व्यक्तित्व और परिवार समाज से प्यार का बंधन ही हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है। साथियों, बात करेंगे आज के मौसम का। तो उत्तर बिहार में झमाझम बारिश हुई है और अब राज्य भर में बारिश रहेगी। बिहार में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई और अब पूरे राज्य में ऐसा ही बारिश, रिमझिम बारिश होती रहेगी दोस्तों। और वज्रपात की भी आशंका है, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है, तो अलर्ट रहना है दोस्तों। अगर मौसम ख़राब हो तो बाहर निकलने से बचें। कभी भी बिजली के खंभे के पास या फिर पेड़ के नीचे मौसम ख़राब होने पर कभी भी आप रुके नहीं। अगर रुकना ही हो, आप कहीं सफ़र में हों और बारिश होने लगी हो, तो आप कहीं मकान का आश्रय लें, क्योंकि बिजली जो है अक्सर बिजली के खंभों में करंट आता है और गाछ भी बिजली को, आसमानी बिजली को खींचता है अपनी ओर। तो इन बातों से आप सावधान रहें दोस्तों। और अब क्यों ना हम सब एक सुहाने सफ़र पर चलें और जानते हैं रेलगाड़ियों की रफ्तार आज क्या कहती है। तो दोस्तों, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 1553, ये गाड़ी बस चंद मिनटों में यहाँ से प्रस्थान करने ही वाली है। 7:50 पर इसका यहाँ से प्रस्थान करने का टाइम है दोस्तों। ये गाड़ी ऑन टाइम है। हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस जो यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है, 7:45 पर यहाँ से छुक छुक करती हुई हमारे अपनों को लेकर ये चल चुकी है। जी दोस्तों, बात करेंगे 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी अपने सही समय पर आने की सूचना है और इसका समय है 8:15। लेकिन दोस्तों रुकिए जरा सा, 8:05 पर आने वाली ब्रह्मपुत्र मेल अपने टाइम से लगभग 5 घंटे विलंब से आ रही है। तो अगर कोई आपका अपना आने वाले हैं, आपका कोई फ्रेंड, कोई परिवार के सदस्य, तो आप रुक कर जाएं, क्योंकि लगभग ये ट्रेन 5 घंटे विलंब से आने की सूचना है और उसका नंबर है 15358 153416 जमालपुर साहबगंज पैसेंजर। ये गाड़ी अपने सही समय पर आने की सूचना है, इसका समय है 8:37। अपने राइट टाइम पर चलने की सूचना है भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो यहाँ से प्रस्थान करती है 8:55 पर। यह साप्ताहिक ट्रेन अपने नियत समय पर यहाँ से प्रस्थान करेगी दोस्तों। और रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका समय है 9:00, इसका नंबर है 13403। रांची वनांचल भागलपुर एक्सप्रेस ये एकदम नियत समय पर आने की सूचना है और नियत समय पर ही आने की सूचना है साहबगंज जमालपुर मेमू की, जिसका टाइम है 9:15 और इसका नंबर है 63431। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी, ये गाड़ी भी अपने निर्धारित समय 9:35 पर चलने की सूचना है। और भागलपुर से मुख्य दो रेलगाड़ियां जो ये भागलपुर से बाहर के लिए जाती हैं, वो हैं 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, ये गाड़ी बिल्कुल अपने सही समय 10:15 पर चलने की सूचना है और बिल्कुल अपने राइट टाइम पर चल रही है। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका समय है 11:55 और नंबर है 12367। तो दोस्तों, हम लोग भी अब सुहाने सफ़र पर निकल चलते हैं।

ये दोस्तों जीवन में मस्ती, जीवन में आनंद, जीवन में शांति, जीवन में संगीत का बेहद बेहद महत्व है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कुछ न कुछ दुख के थपेड़े हैं, लेकिन उन सब से ऊपर उठकर अगर हम ये सोचें कि हमारा दुख औरों से बहुत कम है तो हमें जीवन जीने में आनंद आएगा, और ये आनंद ही हमें हौसला देता है दोस्तों और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप सबों के जीवन में भी मस्ती रहे, आनंद रहे, सुख रहे, शांति रहे, इसी कामना के साथ अब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: நிலைமை கட்டுப்பாடு
1: பாரதிய சேனா.
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं. प्रातः के 8 बजने वाले हैं. अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज खबरनामा और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना से. तो आइए समाचारों के लिए शामिल होते हैं दिल्ली की प्रसारण सभा में.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय आदिवासियों कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन, व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
1: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
7: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
2: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled State Cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
7: Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
8: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharti Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend majors to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
7: Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road taxes. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs while scrapping old vehicles, and mandates that only electric two-wheelers can be registered starting April 2028. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the government has devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
9: This is truly a historic day. Delhi EV policy, which we aim to implement starting July 1, 2026, following the LG approval, the policy will remain in effect until March 31, 2030. It focuses entirely on electric vehicles, especially zero emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city for the benefit of its residents. We have devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
7: The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin today. Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar announced this while briefing the media in New Delhi yesterday. He said booth-level officers, BLOs, will visit every household from today till the 29th of July to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between 5th of August to 4th of September. Final electoral roll will be published on the 7th of October. He informed that electors can also fill enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians, including women and children, and injured 163 others. In a statement, External Affairs Ministry said that this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. It reflects Pakistan's persistent pattern of reckless behavior and its futile attempt to externalize internal failures through desperate acts of violence beyond its borders. India conveyed its condolences to Afghan families that have lost loved ones and prayed for early recovery of those injured. India also reiterated its unwavering support for Afghanistan's sovereignty and territorial integrity. The Indian Army has dismissed media reports claiming that the Chinese People's Liberation Army, PLA, recently encroached into Arunachal Pradesh and set up camps. The Army said that such reports are incorrect and without any basis. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. During the visit, she will attend the first convocation ceremonies of the Central Tribal University of Andhra Pradesh and the Central University of Andhra Pradesh. We have a report.
10: The President will grace the maiden convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam today. Degrees will be awarded to 373 students who completed their undergraduate and postgraduate programs between the 2020 and 2025 academic years. She will also present gold medals to 13 meritorious students, including 10 women, for their outstanding academic performance. Established in 2019 with its headquarters at Vijayanagaram, the Central Tribal University of Andhra Pradesh commenced academic activities in 2020. The convocation marks a significant milestone in the university's academic journey. Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, and several other dignitaries are expected to attend the ceremony. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
7: Union Health Ministry has directed all central government departments and institutions to comply with the Supreme Court's guidelines on stray dog attacks by today. The directive comes as authorities work to strengthen measures aimed at addressing stray dog attacks, public safety and compliance with judicial directions. all concerned departments have been asked to ensure that the Supreme Court's guidelines are implemented within the stipulated deadline. The order comes after a Supreme Court ruling last year that aims to make public spaces safer, especially for children and patients who use them every day. Every year on the 30th of June, Jharkhand observes Santhal Revolution Day, Hul Divas, to commemorate the sacrifice of tribal revolutionaries. We have a report.
11: In the Bhognadi village of Sahibganj district of Jharkhand, like every year, thousands of people will gather today to pay tribute to the immortal martyrs of the Santhal Hul, Sidhu Kanhu, Chand Bhairav, Phulo and Jhano. It was on 30th June 1855 that Sidhu and Kanhu launched the Santhal Hul from Bhognadi against British rule and the exploitative money-lending system, a movement that many scholars of tribal history regard as India's first organized war of independence. Historians say that after an assembly of nearly 20,000 people, an armed struggle began against the British, with Santhals and several other local communities joining the uprising. Armed with bows, arrows and traditional weapons, the revolutionaries mounted a strong challenge to the East India Company's forces, and the movement continued for nearly a year. During the struggle, Chand and Bhairav attained martyrdom, while Sidhu and Kanhu were later captured and executed by the British. Hul Divas is regarded in Jharkhand as a symbol of self-respect, resistance and tribal identity, and a variety of programs are organized across the state, especially at Bhognadi, to mark the occasion. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
7: President Draupadi Murmu has paid a tribute to the immortal heroic men and women of the Sidhu Kanhu, Chand Bhairav and Phulo Jhano and Santhal rebellions for the sacrifices and martyrdom. The president said that they waged a historic struggle against the exploitation of tribal society and to protect the identity. Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the martyrs of the Santhal Revolution on the occasion of Hul Divas. He also remembered all those who sacrificed everything for tribal identity and the motherland. The United States and Iran will hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over the Strait of Hormuz. The meeting comes amid renewed tensions between the U.S. and Iran over the waterway through which 20% of the world's crude oil flows. The dangerous period of violence that began on Thursday disrupted U.S. President Donald Trump's attempt to end hostilities with Iran and negotiate a settlement that addresses Tehran's nuclear program. Traffic in the Strait of Hormuz fell during the tit-for-tat strikes, slowing the recovery of the waterway. Iran and U.S. exchanged missile strikes over the weekend, collapsing trade in the Strait of Hormuz for multiple days. Later, U.S. and Iranian officials agreed to temporary ceasefire yesterday after President Trump threatened to escalate the conflict. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give five-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, U.S. last night. In another round of 32 fixture, Germany got eliminated from the tournament after a 1-1 draw against Paraguay that led to a penalty shootout in Foxborough. Gustavo Alfaro's men held their nerve in the penalty shootout to secure a historic 4-3 victory. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbh, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
12: Thank you, Abhishek. A month-long special intensive revision SIR of the electoral roll beginning today is covered by some of the dailies. SIR process begins in Delhi and four states today, reports the Asian Age. Voter verification drive begins in Delhi today, leads the Times of India. The statesman quoting Prime Minister Narendra Modi says, Indian diaspora living bridge between India, Seychelles. Bengal passes preventive detention legal curbs bill, notes the Hindu. Prime Minister to skip Khamenei's state funeral leads the Asian Age. And finally, Delhi mandates all two new wheelers to be electric from 2028 to fight pollution, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
7: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari.
13: Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राज़ील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम से मुतालिक आयद आरजी जाबता जाती पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के तमाम पेट्रोल पंप पर मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
14: वजारत के बयान के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान के दौरान आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ, ताहम हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों को मुस्तहकम रखकर आम सार्फीन को इसके असरात से महफूज रखा। इसके नतीजे में खुर्दा कीमतों और बड़ी मकदार में ईंधन खरीदने वाले सार्फीन के लिए मुकर्र कीमतों में नुमाया फर्क पैदा हो गया। वजारत ने कहा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए 12 जून को आरजी जाबता जाती इकदाम नाफिज किए गए थे, जिनके तहत पेट्रोल पंपों पर हर सारिफ या हर गाड़ी को रोजाना ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल फराहम करने की हद मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सनअती इदाराजाती और कमर्शियल सारिफीन के लिए भी खसूसी जाब्ते नाफिज किए गए थे। इन इकदामात का मकसद डीजल की कालाबाजारी, जखीरांदोजी और गैर कानूनी तौर पर ले जाने को रोकना और आम सारिफीन के लिए पेट्रोल और डीजल की बिला रुकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाना था। आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने असेंबली में ऐलान किया कि 2 जुलाई को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में इस कानून का इब्तदाई मसवदा पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, उत्तराखंड और आसाम के मॉडल को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर आला के मुताबिक ये कमेटी शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने समेत मजमुई तौर पर 9 मौजूआत का जायजा लेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती हुकूमत यकसां सिविल कोड का हतमी मसवदा तैयार करेगी। अलबत्ता वज़ीर आला ने वाज़े किया कि दर्ज फहरिस्त कबायल, आदिवासी, कुर्मी बिरादरी और कदीम मकामी कबायल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मरकजी इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्म सनत को फरोग देने के मकसद से 2 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले कल नई दिल्ली में इत्तलाआत और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग में किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
15: मीटिंग में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने, भारतीय सिनेमा के माहौलियाती निज़ाम में उभरती टेक्नोलॉजी को मरबूत करने के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। وزارت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد بھارتی سینما کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانا، بالخصوص چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں سینما کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اسٹیڈی کمی گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو بھارتی سینما کو درپیش چیلنج اور مواقع کا مطالعہ کرے گا۔ یہ شعبے کو مضبوط بنانے کے طریقے تجویز کرے گا اور بھارتی فلموں کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گا۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان۔
14: قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسرز بی ایل او آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے اور اہل رائے دہندگان سے پر کیے ہوئے فارم وصول کریں گے۔ دلی کابینہ نے دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ یکم جولائی سے شروع ہونے والی اس دوراندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح سے کاربن کے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں، خاص طور پر کاربن کے صفر اخراج والی گاڑیوں پر مرکوز ہے۔ اس کا مقصد دلی کو بتدریج آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں مرحلہ وار اس پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت ای وی انفراسٹرکچر بنانے اور سال بسال روڈ ٹیکس معاف کرنے میں 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر دلی کے لوگوں کو اس پالیسی سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کے فوائد حاصل ہوں گے۔
4: پوری کی پوری پالیسی الیکٹرک وہیکلز کے اوپر کیندرت ہے۔ اس پوری ای وی پالیسی کے انترگت ہمارا 7,000 کروڑ کا خرچ تو ماتر ان 4 سالوں میں ہوگا، اور اس کے علاوہ 8,000 کروڑ انے ہم لوگ اس ای وی انفراسٹرکچر کو کریٹ کرنے میں، اور جو سال در سال روڈ ٹیکسز جو معاف ہوں گے اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ تو لگ بھگ 15,000 کروڑ کا لابھ دلی کی جنتا کو اس ای وی پالیسی کے مادھیم سے ہونے والا ہے۔
14: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ 163 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی یہ کھلی جارحیت، افغانستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ پر حملہ اور خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے، تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں دراندازی کی ہے اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے مرکزی حکومت کے تمام محکموں اور اداروں کو آوارہ کتوں کے حملوں سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر آج سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات اس وقت سامنے آئی ہیں جب حکام آوارہ کتوں کے حملوں سے نمٹنے، عوام کی حفاظت اور عدالتی ہدایات کی تعمیل کے مقصد سے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس کا مقصد عوامی مقامات کو خاص طور پر بچوں اور مریضوں کے لیے محفوظ بنانا ہے جہاں ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے۔ ہر سال 30 جون کو سنتھال انقلاب کی یاد میں ہول دیوس منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر قبائلی انقلابیوں سدھو کانو، चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
16: झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। 30 जून 1855 को आज ही के दिन सिद्धो और कान्हों ने भोगना डी से बरतानवी हुकूमत और इस्तेहसाल पर मबनी सरमायादारान निज़ाम के खिलाफ संथाल हूल का आगाज किया था। कबायली तारीख के माहिरीन इस तहरीक को आज़ादी की पहली मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करार देते हैं। मुअर्रिखीन का कहना है कि तकरीबन 20,000 लोगों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुसल्ला जिद्दोजहद का आगाज हुआ, जिसमें संथालों के अलावा दीगर मकामी तबकात भी शामिल हुए। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
14: हूल दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन शहीदों ने कबायली सोसाइटी के खिलाफ इस्तेहसाल और उनकी शनाख्त के तहफ्फुज़ की खातिर तारीखी जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि शहीदों की गिरा कदर कुर्बानी मुल्क के सभी शहरियों को तरगीब देती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हूल दिवस के मौके पर संथाल इंकलाब के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने कबायली शनाख्त और मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों को याद किया। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज़ से मुतालिक तनाज़े को हल करने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आबनाए हुरमुज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। आबनाए हुरमुज़ दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में से एक है, जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल गुजरता है। गुज़िश्ता जुमेरात से शुरू होने वाली कशीदगी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मफाहमतनामे तक पहुँचने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को मुतासिर किया। फुटबॉल में कल रात अमरीका के टेक्सस के ह्यूस्टन स्टेडियम में ब्राज़ील जापान को एक के मुकाबले दो गोल से हराकर

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए। कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। राज्य की 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। लगभग 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की लंबाई 412 किलोमीटर है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनिसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित अन्य परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने और समयबद्ध निर्माण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में आवागमन सुगम होगा और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार तथा संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 60 मीटर से 250 मीटर लंबे 479 पुलों की भार क्षमता और संरचनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने अगले 6 महीने में सभी चयनित पुलों का सेफ्टी ऑडिट और हेल्थ कार्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विभाग के अनुसार पुलों की तकनीकी जांच IIT पटना, IIT दिल्ली तथा अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरत के अनुसार पुलों की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में 250 मीटर से अधिक लंबे 85 पुलों की जांच पहले से ही IIT पटना द्वारा की जा रही है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने लगभग 5,88,000 शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76,000 सरकारी स्कूलों में स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि तबादला पोर्टल अगले सप्ताह सक्रिय किया जाएगा। शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 सप्ताह के भीतर तबादला प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि रेशनलाइजेशन से यह स्पष्ट हो गया है कि किस विद्यालयों में किस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और कहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इससे छात्रों की संख्या और विषयवार जरूरत के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन यानी PVG-RAM-G योजना कल से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विकसित भारत GRAM-G योजना के तहत देश भर में एक समान मजदूरी दर लागू करने की मांग की है। श्री कुमार नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लिए स्वीकृत 61 लाख आवासों की राशि शीघ्र जारी करने की भी मांग की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में शुरू किए गए ऑनसाइट जियो टैगिंग पहल को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों में शामिल करते हुए सराहा गया। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर सिपाही के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। खगड़िया में पुलिस ने सॉल्वर गैंग अभ्यर्थियों, शिक्षकों और एक परीक्षा केंद्र के अधीक्षक समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से वाहन, मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक, एडमिट कार्ड और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की मांग की जाती थी। वहीं हाजीपुर में एक परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक और 2 वीक्षकों के खिलाफ परीक्षा में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवादा में 2 अभ्यर्थियों द्वारा OMR शीट की कॉपी जमा नहीं करने के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर में एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में सुपौल, अररिया, वैशाली, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा और मधेपुरा समेत कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने और बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस दौरान 38.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले में वज्रपात की घटना में 1 महिला और 1 बच्ची की मौत हो गई। वहीं मुंगेर में 1 किशोरी की मौत हुई है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में खेत में काम कर रही 3 महिलाएं वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गईं। इधर दरभंगा और मधुबनी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 प्राचीन शिव मंदिरों के गुंबद और मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गए। मधुबनी के बाबूबरही में 1 पेट्रोल पंप की छत को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। महिला बॉक्सर प्रगति ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं 55 किलोग्राम भार वर्ग में नित्या पांडे ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष वर्ग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में वीर ने कांस्य पदक हासिल किया। 67 किलोग्राम भार वर्ग में लक्की ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। मोतिहारी की एक अदालत ने भूमि विवाद में हुई हत्या के एक मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 33,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पटना की NDPS अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में दोषी ओडिशा के सिमलीगुड़ा निवासी दिलीप पासवान को 12 वर्ष कारावास और 1,00,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अररिया की एक अदालत ने NDPS एक्ट में दोषी रंजीत राय को 14 वर्ष सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। छपरा में अधिवक्ता पिता पुत्र दोहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में मृतक का भाई भी घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत थना चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 10,00,000 रुपए मूल्य की 83 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के नरकटियागंज में रेलवे सुरक्षा बल ने सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस की पेनेट्री कार और उससे सटी बोगी से 62 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में पेनेट्री कार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 400 कार्टन शराब बरामद की है। शराब की यह खेप दवा के बीच छुपाकर लाई जा रही थी। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना हाजत से 25,000 रुपए का इनामी अपराधी प्रभु भगत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात 3 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 53,000 करोड़ से अधिक की 5 परियोजनाएं स्वीकृत, सीएम और पथ निर्माण मंत्री गडकरी संग बैठक में सहमति।

0: हिंदुस्तान ने लिखा है, शिक्षकों के तबादले की बाधा दूर, पोर्टल पर अगले हफ्ते से आवेदन। दैनिक भास्कर लिखता है, दरभंगा में लैंडिंग के दौरान स्पाइस जेट का टायर फटा, इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट। प्रभात खबर की सुर्खी है, 2 जुलाई से मलाही पकड़ी तक चलेगी पटना मेट्रो। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज अखबार की सुर्खी है, बिना परिसीमन होंगे बिहार पंचायत चुनाव, आरक्षण रोस्टर पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए, कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओ, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। पेश है फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम नकमे नए पुराने। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से, फिल्म के इस युगल गीत के साथ है जिसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

लीजिए साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं बिच्छू फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है हैरी आनंद, जसविंदर नरूला और साथियों ने। गीत रचना है समीर की, संगीत रचना आनंद राज आनंद की।

0: साथियों, फिल्मी गानों का आनंद आप ले रहे हैं इस समय आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techy new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी साथियों, फिल्म संगीत के कार्यक्रम नगमे नए पुराने को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं चलते चलते फिल्म का ये युगल गीत। आवाज़ें हैं अलका याज्ञिक और अभिजीत भट्टाचार्य की।

चलते चलते फिल्म का ये युगल गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याज्ञिक और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। लीजिए दोस्तों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मुकेश ने। नगमानिकार हैं कमर जलालावादी और मौसीकी से नवाजा है कल्याण जी आनंद जी ने। जी साथियों, हम आपको फिर से याद दिला दें कि आज कल्याण जी साहब का जन्मदिन है।

जी हाँ साथियों, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में सरस्वती चंद फिल्म का ये गीत।

साथ ही इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नकमे नई पुराने अब समाप्त होता है। हमें खेद है कि कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत ये गीत हम आपको पूरी तरह नहीं सुनवा पाए। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है हमारा हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम बज़्म-ए-उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहम्मद सरशार अहमद।

है और सुनेगा कभी यहाँ से कभी वहां से। और इस शेर पे खास तवज्जो का तालिब हूँ कि

0: क्या कहना,
1: मिला है मुझको उन्हीं का सदका, कभी यहाँ से कभी वहां से। और मक्ता भी बर्दाश्त कर ले कि तुला

हूँ, नींद से अब मैं जाग गया हूँ, सोते सोते सब कुछ खोया। नींद से अब मैं जाग गया हूँ, सोते सोते सब कुछ खोया।

लिया है और शेर समाप्त किएगा, जब से गया तू छोड़ के मुझको मर मर कर होता हूँ जिंदा, जब से गया तू छोड़ के मुझको मर मर कर होता हूँ जिंदा। और इस शेर को देखिएगा, एक झलक पाने की खातिर कब से आस लगाए बैठा, एक झलक

आप सुन रहे हैं लोकगीत कलाकार हैं सृष्टि सुमन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक देवी गीत है।

0: लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सृष्टि सुमन के गाए कुछ लोकगीत। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल और ब्रेक के बाद हम आपको सुनवाएंगे एक झूमर।
1: Then, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

इसके साथ ही लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की कलाकार थीं सृष्टि सुमन। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए इस वाद्य संगीत के साथ।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

चंदू चैंपियन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्री रामचंद्र की आवाज़ में प्रोग्राम का अगला गीत राज बर्मन के स्वर में फिल्म है क्रैक।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

विशाल मिश्रा और शिल्पा राव का गाया गीत आप सुन रहे थे फाइटर फिल्म में। प्रोग्राम में अब हम आपको सुनवाते हैं खेल खेल फिल्म का गीत, गायक कलाकार विशाल मिश्रा और रोचक कोहली।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
1: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर
2: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
1: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
2: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
2: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
1: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
3: कार्यक्रम की अगली पेशकश रिचा शर्मा और जावेद अली के स्वर में फिल्म है मैदान।

अरिजीत सिंह का गाया गीत आप सुन रहे थे श्रीकांत फिल्म में, और इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का कार्यक्रम नई फिल्मों से। ये आकाशवाणी भागलपुर है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में। नाम से आप वाकिफ हैं, फिर भी हम दोहराना चाहेंगे, कार्यक्रम है गुलदस्ता। 30 मिनट का यह कार्यक्रम होता है और इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैसे गीत जो आपके कानों में रस घोलेंगे। बहुत ही मधुर और दिलकश आवाज़ में लता की खूबसूरत आवाज़, और फिल्म है स्वीकार किया मैंने। इससे पहले हम आपको कुछ सुनाना चाहेंगे। कहते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, बन के हंसी होंठों पर रहते हो, अशकों में भी तुम बहते हो तुम भी ना।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700

स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:48 और पूरे 14 सेकंड प्रोग्राम चल रहा है गुलदस्ता। दोस्तों, कार्यक्रम के बारे में छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करते चलें। आप हमारे प्रोग्राम को रेडियो के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप के ज़रिए भी सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। घर में हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, घर में हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। बच निकलते हैं अगर आतिशे सयाल से, हम शोलाए आरिज़े गुलफाम से जल जाते हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये गीत भी बहुत बहुत पसंद आएगा। दोस्तों कहते हैं कि क्या जानिए क्या सच, क्या अफसुरदा हुआ दिल, क्या जानिए क्या सोच के अफसुरदा हुआ दिल, मैंने तो कोई बात पुरानी नहीं कही।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। हम आकाशवाणी भागलपुर से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

0: नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मनीषी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के जीवन में झांकने में गुजार देते हैं, खुद की ज़िंदगी में तो झांकना भूल सा जाते हैं। तो इसी पर किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मौका मिले कभी तो कागज़ पर अपनी थकान लिखूँगा। अगर मौका मिले कभी तो कागज़ पर अपनी थकान लिखूँगा, मज़बूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा, वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है, उस एक झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगा। नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे दुनिया में, मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया वो लहूलुहान स्वाभिमान लिखूंगा। लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवाह था मेरी सिसकियों का, पर सुबह उठकर फिर से पहना वो चट्टान जैसा इंसान लिखूंगा। मैं लिख पाऊँ कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही सम्मान लिखूंगा। बहनों, बातें तो बहुत हैं जो अब से करनी है और बातों का सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहार पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है, अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: बहनों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि हर दिन खास होता है, आज का दिन भी खास है। आज है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे। ये दिन प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। उसका उद्देश्य लोगों को एस्ट्रॉइड्स के बारे में जागरूक करना, उनसे होने वाले संभावित खतरों की जानकारी देना तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष का अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधान कितना महत्वपूर्ण है।

क्षुद्र ग्रह सौर्यमंडल में पाए जाने वाले चट्टानी पिंड हैं, जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे में घूमते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी की कक्षा के पास भी आते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह यानी यदि पृथ्वी से टकराएं तो भारी विनाश कर सकते हैं। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में तंगुस्का घटना हुई थी। एक विशाल अंतरिक्षीय पिंड के विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लाखों पेड़ नष्ट हो गए थे। इसी घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित किया। तो बहनों, ये तो थी आज के दिन विशेष से जुड़ी जानकारी। और अब इस जानकारी के दौर के बाद चलते हैं गीतों की मधुर दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, हमारी हमेशा ही कोशिश होती है कि हम आप तक अलग अलग विषयों से जुड़ी जानकारी पहुंचा सके। तो इसी संदर्भ में आज हम ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुनेंगे, जिसका विषय है मादक द्रव्यों का महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर रोमा यादव, भेंटकर्ता है नाओमी शांति हेम्ब्रम। तो आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता।
1: बहनों नमस्कार। महिला स्वास्थ्य स्तंभ के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे कि मादक द्रव्यों का महिला स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। कई बार जानते हुए या अनजाने में भी ऐसे पदार्थों का सेवन महिला करती हैं, तो उसके क्या असर होते हैं, क्या प्रभाव कुप्रभाव पड़ता है शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं शहर की जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर रोमा यादव। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मादक द्रव्यों की जब हम बात करते हैं, तो कई बार ये जो ड्रग की बात हम जैसे बोले, तो वो सिर्फ नशा वाली बात ही नहीं होती है, कई ऐसे दवाएं भी होती हैं जो इस तरह इस कैटेगरी में हम कह लें कि आती हैं। तो जाने अनजाने महिलाएं कभी कभी इस तरह सेवन करती हैं, तो दोनों ही तरह की बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जानबूझकर जो किया जाए मादक पदार्थों का सेवन, या अनजाने में भी अगर इस तरह का कोई सेवन महिला द्वारा हो जाता है, तो क्या क्या असर पड़ता है महिला स्वास्थ्य पर।
2: नमस्कार। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, ऐसे तो हमारे हिंदुस्तानी परिवेश में महिलाएं मादक द्रव्यों का सेवन कम से कम करती हैं
1: जी।
2: लेकिन आज जो आधुनिकता का दौर गुजर रहा है और हम अपने आप को आधुनिक साबित करने में लगे हुए हैं, इसके तहत महिलाएं इस तरह के मादक द्रव्यों का शिकार हो रही हैं। अपने को सोसाइटी के साथ समाज ऊंचे या कह सकते हैं कि ऊंचे समाज में अपने को प्रतिष्ठापित करने के लिए वो मादक द्रव्यों का सेवन कर रही हैं, जैसे कि अल्कोहल शराब पी रही हैं और तरह तरह के जो आप आजकल द्रव्य आजकल दवाएं देखते हैं, कोकेन और हेरोइन और ये सब, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारी युवा पीढ़ी वस्तुतः भटक गई है, उसको अपने जो हिंदुस्तान के तौर तरीके और संस्कार, उससे अलग हट करके वह पाश्चात्य सभ्यता और शैली को अपना रही है और इस अपनाने में वह यह भूल जाती है कि उसे किस तरह की चीजें उसके शरीर पर क्या असर डालेंगी। हिंदुस्तान अपने आप में एक गर्म देश है, है ना, जैसा कि आप कह सकते हैं, और यहाँ पर उतनी ठंड नहीं पड़ती कि आप अब ठंड से बचाव के लिए अल्कोहल या शराब या अन्य तरह के चीजों का इस्तेमाल करें। तो हमारे वातावरण में इस तरह की चीजें, जो मादक द्रव्य हैं, ये चीजें हमारे वातावरण में हमारे शरीर को पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं
1: जी।
2: और महिलाओं के स्वास्थ्य के मायने में तो यह बात और भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही महिलाएं कल को माता बनती हैं, गर्भ धारण करती हैं, और उस समय इन सारी दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव उनकी गर्भावस्था में पल रहे शिशु पर पड़ता है
1: जी।
2: तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं कि सामान्यतया जो हमारी महिलाएं हैं वह मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे अल्कोहल, आप जैसा हमने कहा कि हेरोइन, कोकेन और
1: धूम्रपान।
2: अपने आप में यह तेजी से बढ़ता हुआ फैशन हो रहा है युवा महिलाओं के बीच में, धूम्रपान। तो ये सारी चीजें जो आप जानती हैं कि अल्कोहल लेने

0: जैसे हमारी मानसिक हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से हम कमजोर होने लगते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा लीवर उस में इस तरह अल्कोहल और शराब को ठीक से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता और हम लीवर या यूं कहिए कि सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जो जानलेवा साबित हो जाती है
1: जी।
0: इसी तरह जो धूम्रपान है, यह आप धूम्रपान हमारे यहाँ जो लंग का कैंसर है उसका सबसे बड़ा कारण है,
1: फेफड़े का कैंसर
0: उसका सबसे बड़ा कारण है। तो जो हम अपने ये युवा महिलाएं युवा लड़कियां जो है स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए जो धूम्रपान कर रही हैं, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि आप एक तरह से जहर का पान कर रही हैं, अपने शरीर में जहर डाल रही हैं और आपको जो बार बार खांसी होना जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं या फेफड़े का टीबी हो जाना और बहुत बड़ी बीमारी जैसे फेफड़े का कैंसर हो जाना ये

0: लपेट करके जो ड्रग्स हैं उसको लपेट करके और उसका सेवन करते हैं, धुएं की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और है जो कि ये जो इंजेक्शन के थ्रू जो लेते हैं वो जब ये मादक दवाएं, ये आपको और भी बड़ी बीमारी की तरफ ले जाता है। अगर एक ही सिरिंज निडल से आप खुद इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को देते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स से की तरह की बहुत बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसका इलाज भी संभव नहीं है।
1: जी जी, तो ये बात तो हुई कि जब आम तौर पर मादक द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं में भी इसके इस तरह के कुप्रभाव पड़ते हैं। एक बात आपने ये भी कहा डॉक्टर कि चूंकि वो आने वाले दिनों की माताएं भी होती हैं, तो उस स्थिति में कि आने वाली संतति पर या मातृत्व पर क्या कुछ असर पड़ सकता है?
0: यह सबसे गंभीर बात है कि यही महिलाएं, यही आज की हमारी युवा महिलाएं कल को माँ बनती हैं, शादी होती हैं और गर्भधारण करती हैं। तो हमारे यहाँ करीब 50-60% जो गर्भधारण करने की प्रक्रिया है वह समझिए एक तरह से अचानक हो जाता है, एक्सीडेंटल होता है। उसके लिए हम योजना नहीं बनाते कि हमको कब बच्चा चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह की महिलाएं अगर मादक द्रव्यों का सेवन करती हैं और वह उनको गर्भधारण हो जाता है, उनको पता नहीं होता है, तो ये गर्भावस्था के शुरू के दौर से ही गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए मैं उन महिलाओं से कहूंगी कि अगर वो इस तरह के कोई भी मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करती हैं तो जब गर्भ धारण करना चाहती हैं उसके पहले ही उसको छोड़ दें, ताकि उसके शरीर में जो ब्लड में जो घुला हुआ उसका प्रतिकूल प्रभाव डालेगा बच्चे पर वह पहले ही खत्म हो जाए।
1: जी,
0: अगर आपने कोई योजनाबद्ध तरीके से आपने गर्भ धारण नहीं किया है और अचानक से आप गर्भ धारण कर ली हैं, तो जैसे ही आपको गर्भ का पता चल जाए तुरंत ही इन जैसे धूम्रपान, जैसे अल्कोहल, शराब, इन सारी चीज़ों या भी और अनेक तरह की दवाओं का आप सेवन करते हैं उनका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए आने वाले बच्चे के हित में।
1: जी, तो क्या माँ बनने की जो क्षमता है वो भी इससे प्रभावित होता है?
0: माँ बनने की भी क्षमता प्रभावित होती है। आपका जो एक तरह का समझिए कि शारीरिक और मानसिक दोनों पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और आपका अंदर से जो एक स्ट्रांग है जो कि सेक्स के लिए मतलब उसको ये करता है और जो सेफ सेक्स है वो सबसे आपको दूर कर रहा है, आप गलत तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं और हो सकता है कि उस दौरान आप HIV और एड्स और हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो जाएं। प्लस यह आपके जो प्रजनन अंग है उस पर भी बुरा प्रभाव डालता है, जो अंडा बनने की प्रक्रिया है उसको कम कर देता है, और इस तरह की महिलाओं को गर्भधारण में दिक्कत होती है।
1: जी,
0: शुरू के सप्ताह में, गर्भधारण के शुरू के 12 सप्ताह तक बच्चे का के सारे अंग का विकास होता है, और उस समय अगर आप नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो सबसे पहले बच्चे के बनावट में, उसके संरचना में कहिए या यूं कहिए कि संरचना में गड़बड़ी हो जाती है, और बच्चा जो हमारा पैदा होगा वह तरह तरह के जन्मजात विकृतियों का शिकार होने वाला बच्चा होगा।
1: जी जी,
0: तो शुरू के 3-12 सप्ताह बच्चे के बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी, ये विकृति जो आप बताएं वो शारीरिक विकृति भी हो सकती है
0: और मानसिक विकृति भी हो सकती है। शारीरिक विकृति के साथ साथ मानसिक रूप से यह बच्चा कमजोर हो सकता है, और अगर बाद में पैदा होगा और अगर थ्रू आउट आप माने पूरे गर्भावस्था के दौरान उसकी माता इन मादक द्रव्यों का सेवन करती है तो जो बच्चा भी उन मादक, जो गर्भस्थ शिशु है उन मादक द्रव्यों का आदि हो जाता है, और जब वह बच्चा पैदा होगा और अब वह माँ से अलग हो गया, अब तो उसे वो मादक द्रव्य नहीं मिल रहा है, तो उसमें तरह तरह के सिम्टम्स उभरने लगते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स हो गया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी शराब पीने वाले व्यक्ति का अचानक शराब बंद कर दिया जाए तो जो उसमें तरह तरह के लक्षण, बुरे लक्षण उभरते हैं, ये सारे लक्षण उन बच्चों में भी उभरते हैं। उनको मतलब चमकी आने लगता है, हाथ पैर हिलने लगता है, बार बार उनको कन्वल्सन होता है, और इस तरह के बच्चे की बचने की संभावना कम हो जाती है, साथ साथ इनका मानसिक और शारीरिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है।
1: जी,
0: तो गर्भावस्था के दौरान अगर इन मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है तो सबसे पहले तो एबॉर्शन होने का चांस होता है, आपका गर्भपात हो सकता है। यह पहली बात है, गर्भपात हो सकता है। अगर गर्भपात नहीं हुआ और बच्चा आपके पेट में पल रहा है तो इस शिशु का समुचित शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा। यह शारीरिक और मानसिक

0: विकृति के साथ यह बच्चा पैदा हो सकता है।
1: जी जी।
0: तीसरी बात है कि जो उसके वजन में, जो गर्भ के लास्ट के 3 महीने में जो उसका वजन बढ़ता है, वह वजन नहीं बढ़ेगा और बच्चा अपने वजन से छोटा पैदा होगा।
1: जी।
0: तो कम उम्र का, कम वजन का जो बच्चा पैदा होगा उसमें तरह तरह की बाद में बीमारियां होंगी और उस बच्चे को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होगी।
1: जी जी, यही बात हम पूछना चाह रहे थे कि उसके उसके जीने की भी जो संभावना होती है वो कम हो जाती है।
0: उसके जीने की, जो डिलीवरी के बाद जो जीने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद यह गर्भ के, यह तो हुआ कि वह पैदा हो जाएगा तो मर

उसका विकास कम हो जाना, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसका ग्रोथ कम हो जाना, और इस तरह का बच्चा कम विकसित होगा, और गर्भावस्था गर्भ के दौरान ही गर्भ में ही उस शिशु की मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से जब अगर उसके बाद भी बच्चा पैदा हो गया तो मैं जैसा मैंने कहा कि तरह तरह की शारीरिक विकृति हो सकती है। और यह तो हुआ कि जो आप मादक द्रव्य ले रहे हैं जैसे धूम्रपान, खास करके धूम्रपान करने से यह स्थिति ज्यादा होती है कि बच्चे का विकास गर्भावस्था में

0: कि कभी भी तबियत गर्भावस्था के दौरान अगर आपकी तबियत बिगड़ जाए तो आप हमेशा महिला चिकित्सक से सलाह लें, न कि मेडिकल में किसी मेडिकल हॉल में जा करके आप सर्दी खांसी बुखार या किसी भी तरह की दवा ले लें। बहुत सारी दवाओं को कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए बी सी, तो उसमें से कुछ दवाएं हैं जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान पूरी तरह सुरक्षित हैं
1: जी,
0: लेकिन कुछ दवाएं हैं जिस पर हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं लगता मां के लिए आवश्यक है और बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कुछ दवाएं बिल्कुल ऐसी हैं जिनका कि गर्भस्थ शिशु पर बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बिना चिकित्सक के सलाह लिए आप दवाओं का सेवन ना करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जिसको कि आप उस समय में क्विनोलॉन्स है ना, अमीकासीन का इंजेक्शन, जैसे अमीकासीन लेने से बच्चे के कान के नस का विकास नहीं होता और बच्चा जन्म से ही बहरा हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन से दांत के रोग हो सकते हैं, तो इस तरह से आप बिना सलाह के दवाओं का इस्तेमाल ना करें।
1: बिल्कुल सही। अंत में विशेषज्ञ सलाह आपकी ओर से।
0: अंत में युवा लड़कियों महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमारा वातावरण है, जो परिवेश है जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं और हमारे जो संस्कार हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखें। आप बचपन से ही गलत आदतों के शिकार न हुए, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ मिल करके शराब धूम्रपान और तरह तरह की जो नशीली दवाएं हैं इनके सेवन की आदत ना डालें, ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और आने वाला जो गर्भस्थ शिशु होगा वह भी एक अच्छा सुंदर बच्चा, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा नहीं होगा, जो आपकी एक जवाबदेही है समाज के प्रति, देश के प्रति, कि आप खुद भी एक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नागरिक होएं और एक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे को जन्म दें एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए।
1: बहनों, अभी हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता जिसका विषय था मादक द्रव्यों का महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर रोमा यादव, भेंटकर्ता थी नाओमी शांति हेम्ब्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
5: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
4: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
1: और अब चलते चलते बहनों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये था बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, प्रस्तुत करता थी श्री पार्वती के। ये आकाशवाणी भागलपुर है। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
3: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
3: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
3: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
3: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान

0: या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं।
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे, जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों

0: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
1: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
1: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
1: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ

0: से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे,
4: हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे,
4: हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
5: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
6: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा। हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
5: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
7: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
8: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन, कू कू।
9: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
10: मेरा भी कुछ यही हाल है।
7: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
10: क्या
8: क्या
10: क्या,
7: क्या? जहाँ सब तक कोयल गाए,
8: नीचे
7: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
5: हाँ हाँ यही करो तुम दोनों।
9: जो आज्ञा महाराज।
8: दम लगा के कू।
10: हईशा।
7: गाओ गाओ गाओ, शाबाश शाबाश, सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, डाउन डाउन डाउन।

0: सारे पपी हैं, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काँ, काँ, काँ।
1: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का, का, का।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपीहना पिए जवानी।
1: गाँव गाँव गाँव, अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
6: भाई मैं तो ठहरा कछुआ,

0: रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
0: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
2: तुम हंस क्यों रहे हो कौए, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
0: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो
3: पिए दूजा पानी। कब आएगी बरखा।

0: बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम में आज के गायक कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित। इनसे पहले सुनिए शिव भजन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने, या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं राजेश कुमार पंडित को। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप पुनः प्रादेशिक समाचार के बाद सुन सकेंगे। और प्रादेशिक समाचार के लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण में।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में SIR शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर BLO और BLA2 के साथ SIR की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ताश्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में आज हुल दिवस के मौके पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के शहीद महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हुल क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारे वीर पुरखों का संघर्ष ही हमारी पहचान है और उनका बलिदान हमारी शक्ति है।
1: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
0: इधर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हुल दिवस पर संथाल हुल के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके संघर्ष को जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। झारखंड में SIR आज से शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी तोरपा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित BLO और BLA2 की बैठक का निरीक्षण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार

0: प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 2 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धनबाद जिले में सहकारी सप्ताह समारोह शुरू हुआ। जिला सहकारिता पदाधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता के आंदोलन को लोगों तक पहुंचाना, समितियों को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक और सामाजिक विकास को गति देना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से कल 4th मौत दर्ज की गई। उपायुक्त राजीव रंजन ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली।
2: वही देखने हम लोग आए थे, यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ ब्रेन मलेरिया वाले पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, खासकर के बच्चे हैं। तो ज्यादातर की स्थिति ठीक है, यहाँ पे कई लोग तो रिकवर कर गए हैं। एक दो बच्चे हैं जो भी सीरियस है, तो उनको जो बेस्ट दिया जा सकता है ये डॉक्टर साहब लोग सब प्रयास कर रहे हैं। दवाई वाई सब कुछ यहाँ
3: ना बाबा, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी
0: चलाया जा रहा है।
3: और
0: घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। आईटी, मेटल और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयर कमजोर बने हुए हैं। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह और हजारीबाग में बादल गर्जन के साथ बारिश का अनुमान जताया है। जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हुआ है। गोल्डी मिश्रा और आदित्य वाधवा एशिया कप स्टेज 2, स्टेज 3 और एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में ईरान, चीन और दुबई में खेलेंगे। वहीं के युक्ताश्री का चयन एशिया कप स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में SIR शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर BLO और BLA2 के साथ SIR की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के तीन तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ताश्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं मनोन। गायक कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहुआर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार पंडित के गाए लोकगीत। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा इंतजार।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है धारावाहिक गंगा के सुरताल की कड़ी 9। लेखक हैं अशोक अंचल और निर्देशक दसमती चार्टर और अशोक शरण।

0: गंगा इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर वाराणसी में प्रवेश करती है।
1: उत्तर भारत का एक विश्व प्रसिद्ध शहर था बनारस, जिसका वर्तमान नाम है वाराणसी।
0: मान्यता है कि शहर के उत्तर में वरुण और दक्षिण में काशी नदी होने के कारण ही इसे वाराणसी कहा गया।
1: ये शहर प्राचीन काल से ही अध्ययन, अध्यापन, पारंपरिक हस्तशिल्प कला, ज्ञान विज्ञान, आध्यात्म, महात्म, साहित्य और संस्कृति,
0: ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक आस्था और पौराणिक मान्यताओं के लिए जगत प्रसिद्ध रहा है।
1: वरुण और गंगा के ही दो प्रवाह हैं जिनके किनारे बसा है काशी।
0: काशी वाराणसी के बीच स्थित वो स्थान है जिसके बारे में पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं।
1: कहा जाता है कि इस स्थान पर कभी शिव और पार्वती का आवास रहा है। शिव ने द्वादश ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं को यहाँ स्थापित किया है,
0: इसलिए इस स्थान विशेष को काशी विश्वनाथ के रूप में जाना जाता है।

0: मानव संस्कृति का इतिहास नदियों के इतिहास के साथ ही जुड़ा रहा है।
1: नदियों के तट पर ही मानवीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ।
0: काशी में प्रवाहमान गंगा तो इसका अप्रतिम उदाहरण है।
1: संभवतः इसीलिए गंगा किनारे बसा हुआ ये शहर भारतवर्ष की संस्कृति का संवाहक है।
0: धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू, मुसलमान और बौद्धों के पारस्परिक भाईचारे के संबंध का एक अनूठा संगम है वाराणसी।
1: इतना ही नहीं, गंगा के किनारे बसा हुआ ये प्राचीन नगर भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा प्रतिनिधि है जिसे देखकर भारतीय समाज उसकी संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार और दर्शन से सहज ही साक्षात्कार किया जा सकता है।

0: नाविक, जो सूर्य की पहली किरण से लेकर सूर्य की अंतिम किरण तक पतवार और बहती हुई लहरों के साथ अपनी जीवन नैया की गति निरंतर बनाए रखता है।
1: नाविक की दिनचर्या और परिवार का पोषण गंगा से जुड़े हैं।
0: नाविक जीवन पर्यंत गंगा की धारा के साथ पतवारों का रिश्ता निभाता है।
1: वाराणसी के गंगा घाट पर असंख्य नौकाओं को देखकर पर्यटक भी गंगा विहार का अपना लोभ संवरण नहीं कर पाते
0: और नौकाओं पर चढ़कर एक घाट से दूसरे घाट तक सफर करते हुए काशी दर्शन का लाभ उठाते हैं।
1: नाविक हर मौसम में पर्यटकों को लेकर इस घाट से उस घाट तक आता जाता है।
0: सभी की सुरक्षा के लिए गंगा का वो बेटा सदैव गंगा से कल्याण की विनती करता है।

0: गंगा घाट पर प्रातः काल से न केवल बनारस की गलियों से आते हुए लोग
1: बल्कि पूरे देश और देश के बाहर के श्रद्धालु और दर्शनार्थियों की भीड़ से प्रतिदिन गंगा घाट पर मेले का सदृश्य उपस्थित होता है।
0: कहा जाता है कि गंगा सभी अपावन मनोवृत्तियों को धोकर उन्हें निर्मल और पावन कर देती है।
1: काशी के गंगा स्नान के बारे में श्रद्धालुओं के मन में तरह तरह की आस्थाएं स्थापित हैं।
0: लोगों में गंगा के प्रति आस्था, विश्वास और मान्यताएं जो भी हों, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गंगा स्नान का अपना एक अलग महत्व है।
1: इसका कारण है हिमालय के जंगलों के औषधीय वनस्पति और पत्थरों से होकर आती हुई गंगा अपने जल में औषधीय गुणों का भी प्रभाव रखती है।
0: गंगा के इसी प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं।
1: लोक धुन में गंगा स्नान का पारंपरिक गीत कुछ इस तरह गाते हैं।

0: काशी की गंगा जितनी शुद्ध, स्वच्छ, पावन और पूजनीय मानी जाती है,
1: आज उसका जल उतना ही प्रदूषित हो चुका है।
0: कल कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट को गंगा में मिला दिया जाता है।
1: मृत जीवों को यूं ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है,
0: या फिर शहर की गंदगी, कूड़े और कचरे को इसके जल में फेंक दिया जाता है।
1: ये न केवल गंगा के जल को प्रदूषित करता है,
0: बल्कि ये प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति को भी प्रभावित करता है।
1: इससे गंगा का ही नहीं, संपूर्ण मानव का अहित होता है।
0: कुछ ऐसी ही भावनाओं को यहाँ के निवासी अपने गीतों में अभिव्यक्त करते हैं।

0: गंगा प्रदूषण की पीड़ा केवल काशीवासी श्रद्धालुओं की ही नहीं संपूर्ण भारतवासियों की है।
1: जल प्रदूषण का ये दर्द हम सबको मिलकर मिटाना है, इसे दूषित होने से बचाना है।
0: मनुष्य सारी उम्र संसार के मोह माया से अपने को अलग नहीं कर पाता और जाने अनजाने कई तरह की गलतियां करता चला जाता है।
1: मृत्यु उपरांत यद्यपि मनुष्य के साथ उसका अर्जित किया कुछ भी नहीं जाता है, खाली हाथ आने वाला खाली हाथ ही जाता है।
0: इस सत्य को ऋषि मुनियों ने इस निर्गुण गीत में कुछ इस तरह उद्घोषित किया है।

0: तो आइए हम भी संकल्प लें कि मृत्यु से पहले हम भी नेक कार्य करके जाएं, गंगा को प्रदूषित होने से बचाएं।
1: इसी संकल्प के साथ हम वाराणसी के गंगा के लोकगीतों से रचे बसे गंगा के सुरताल की इस कड़ी को समाप्त करते हैं।

0: इस कड़ी के गीतों में जो पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए उनके नाम हैं हारमोनियम, ढोलक, करताल और झाल।
1: तथा इन सभी गीतों को गाया है मन्ना लाल यादव, जवाहरलाल यादव और आशा ने।
0: मोमेंटस प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत गंगा के सुरताल की इस कड़ी के तकनीकी सहयोगी हैं दासमती चार्टर, अशोक शरण, नारायण साहू तथा कुमार गिरी।
1: धन्य है वाराणसी की भूमि जहां आस्था, श्रद्धा और विश्वास की गंगा निरंतर बह रही है। अगली कड़ी में गंगा की महत्ता और उसके इतिहास के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हर हर, हर गंगे, गंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गंगा के सुरताल की कड़ी 9। लेखक थे अशोक अंचल और निर्देशन था दसमती चार्टर और अशोक शरण का। ये आकाशवाणी भागलपुर है।
1: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
7: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे पटना केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी आज सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अपनी विदाई समारोह के तहत सेना प्रमुख द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर की बिक्री पर 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शीला नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जीराम जी कल से प्रदेश भर में लागू की जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जीराम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इधर पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। अररिया जिले की महिला थाना पुलिस ने एक मामले के अनुसंधान के दौरान वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज बेतिया अतिथि गृह में

0: ट्रिब्यूनल के सामने अपील करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वजारत मालियात के मुताबिक गुज़स्ता साल सितंबर में जारी नोटिफिकेशन में अपील दायर करने की आखिरी तारीख इस साल 30 जून मुकर्रर की गई थी। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने की बड़ी तादाद के सबब आई तकनीकी रुकावट का हवाला देते हुए हुकूमत से आखिरी तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान को भी सलाह दी है कि वह वक्त रहते अपील दायर कर दें और आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें। आर्मी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि हिंदुस्तानी अफवाज को अपनी क़ुव्वत की एक फ़र्द से नहीं बल्कि अपने फ़ौजियों, कमांडरों, साबिक फ़ौजियों, उनके ख़ानदानों और मुल्क के शहरियों के अटूट एतमाद से मिलती है। जनरल द्विवेदी की मुद्दत कार आज ख़त्म हो गई। अलविदाई तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा कि चार दहाइयों से ज़्यादा वक्त तक हिंदुस्तानी अफवाज में खिदमत करना उनके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही। आर्मी सरबराह जनाब द्विवेदी ने नई दिल्ली वाक़ नेशनल वार मेमोरियल पर खिराज अकीदत पेश किया। नए आर्मी सरबराह जनरल धीरज सेठ ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त पर लगाई गई आरजी पाबंदी हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत ने आज कहा कि अवामी जुमरे की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से यह पाबंदी लागू नहीं रहेगी। गौरतलब है कि मगरबी एशिया बहरान के दौरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर 12 जून से आरजी पाबंदी लगाई थी। इसके तहत एक ग्राहक या गाड़ी को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर डीजल देने की हद तय की गई थी। वजारत ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फराहमी मामूल पर आ गई है, इसलिए अवामी मफाद में इन आरजी पाबंदी को वापस लेने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुर मुबैना फर्जी इनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की तातील की मुद्दत वाली बेंच ने अर्जी गुजार को इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। यह अर्जी एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की थी। देही तरक्यात को फ़रोग देने वाली जामे स्कीम विकसित भारत जी राम जी कल से पूरी रियासत में लागू की जाएगी। इसके तहत हर बालिग शख्स को साल में 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें मंसूबे बनाएंगी और मजदूरों के बैंक खातों में मजदूरी की सीधी और बरवक्त अदायगी की जाएगी। जी राम जी योजना मौजूदा में चल रही मनरेगा योजना की जगह लेगी। रियासत के शुमाली हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से कई ज़िलों में अच्छी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने आज गोपालगंज और मगरबी चंपारण ज़िले के लिए शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, मशरकी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली ज़िले में भी कुछ मकामात पर शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में भी कुछ मकामात पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना और आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए हुए हैं। वजीर कोऑपरेटिव रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के सबब उन्हें पटना के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रियासती हुकूमत के कई वज़रा अराकिन कानून साजिया ने अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है। पैरामिलिट्री के, अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है। रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट

उखाड़ के ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
3: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
4: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
5: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि

0: अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
0: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:30 बजे हैं। पेश है फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट से। प्रोग्राम का पहला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

0: हम अपने सुनने वालों को बताते चलें, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट से। प्रोग्राम को हम आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों का गाया गीत अब हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म है चल मेरे भाई।

इस आखिरी गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का चित्रपट से कार्यक्रम। हम आकाशवाणी भागलपुर से बोल रहे हैं। तरंग कार्यक्रम में आज के गायक कलाकार हैं श्यामानंद झा। इनसे पहले सुनिए ब्रह्मानंद की रचना।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: तरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं श्यामानंद झा के गाए गीत व भजन। अब आइए इनसे सुनते हैं महादेवी वर्मा का की रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में आज के गायक कलाकार थे श्यामानंद झा। हम आपको बता दें, इनसे आप सुन रहे थे गीत व भजन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, समूह स्वर में सुनिए देशभक्ति गीत।

0: समूसर में आपने सुना देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और शाम 5 बजे से आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम। विविध भारती कार्यक्रम के लिए आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में।
1: लगा कि इतने लंबे चौड़े, इतने ऊंचे दादाजी, इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
2: हाँ, हाँ। और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है।
1: हाँ।
2: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
1: नहीं। और उन्हें ऐसा लगा ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है, या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने, ये मेरे हैं।
2: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है, और उनकी मासूम हरकतें, नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौना बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है, और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं, और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने ये काम किया था।
2: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम नहीं लेती,
2: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
3: मेरी

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उस सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया। ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना
1: जी।
0: तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती है,
1: बहुत होती,
0: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है,
0: हाँ,
1: खुद के बाल ही काट देते हैं,
0: हाँ,
1: कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं, हाँ, चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते,
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे,
0: हाँ,
1: तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया,
0: हाँ,
1: तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।
0: हाँ।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो वो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर जान में जान आई,
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना। तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं। बिल्कुल, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी बिकट होने लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, एंजॉयिंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माय चाइल्डहुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है। और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: हाँ, सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा

0: क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं,
1: सब पोल खोल दिया
0: अंदर से पापा ने सुना अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
1: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माए कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा लिया।
1: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने छोटे बच्चे ने मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्चे ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण है कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा ले, और घर वालों ने किसी ने देख लिया
1: तो पानी पानी हो गए।
0: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
0: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
1: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे,
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर।

0: शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15
1: इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क
2: सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़
1: एक टुकड़ा का अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: बेखबर
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली है।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल। हाँ, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र
3: ये
4: किया
3: दर्ज
4: जाए।
3: होती है आज के समय में।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
3: बिल्कुल।
4: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
3: जी
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से,
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है के
3: कोई दिलचस्प बात हो तो।
4: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
3: हाँ,
4: आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है इजाजत फिल्म
4: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है।
4: हाँ, उल्टा मतलब के
3: तो, सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ,
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
3: हाँ,
4: ठीक है,
3: संचय करना।
4: हाँ,
3: है यहाँ पर।
4: हाँ, तो उसमें जो गाना है।
3: हाँ,
4: वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
3: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
4: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो। हाँ। लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
3: जी। हाँ, तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
4: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
3: क्या बात है, वाह।
4: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
3: वाह वाह, बहुत सुंदर
4: है ना।
3: तो
4: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
3: रंगी है
4: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं। तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
3: बिल्कुल,
4: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
3: जी।
4: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय है, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: ये अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक, वो और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी
0: जी,
1: चाहिए
0: जी,
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी, जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी
0: है ना, दो अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई।
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली।
0: वाह, क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी, तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं, और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके, मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो, और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया, जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है,
1: हाँ वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर,
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था, रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
0: जी।
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे, और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी, हाँ,
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को,
1: आए बेखबर
0: सुनते हैं, हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ,
0: और
1: 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921, जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
1: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी,
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत

0: चलाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था, फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
1: वहाँ तनवीर खान भी के।
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ, क्या बात है।
0: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओ, क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी।
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील सिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प मतलब, कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भले रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील सिपाही साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील सिपाही साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जी, जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको, और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया। हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे जाते,
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था ना, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर

0: आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं, तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया।
1: जी जी।
0: वहाँ पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे।
1: हाँ।
0: जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है
1: जी।
0: और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया,
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था, जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर के अंदाज में आप हैं, एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले, शेर के साथ
0: जी
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़ें। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते।
1: वाह।
0: इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है। वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब,
0: आप भी बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

0: सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त आमिर स्वागत करता हूं आप युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होंगे। दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को। श्रोताओं आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस पर। आगे कार्यक्रम में मासिक स्तंभ, फोन इन, कुछ बातें कुछ गाने में हम आपको सुनवाएंगे कुछ श्रोताओं से की गई बातों को और उनके मनपसंद गानों को। कार्यक्रम के अगले सेगमेंट दिल्ली ट्रिविया में होंगे एक रोचक सवाल, फन फैक्ट में जानेंगे रेडियो से जुड़े कुछ फैक्ट्स। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे देश विदेश से जुड़ी खबरों को और साथ साथ गीतों का सिलसिला भी चलता रहेगा। श्रोताओं मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक

0: पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अंतराल के बाद कार्यक्रम में पुनः स्वागत है दोस्तों। चलते हैं आज के चर्चा की ओर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो हमें अंतरिक्ष के प्रति जागरूक बनाता है और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा से भी जुड़ा है। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस पे। दोस्तों हर वर्ष 30 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को क्षुद्रग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स के बारे में जागरूक करना और उससे जुड़े संभावित खतरों के प्रति सचेत करना है। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे घोषित किया था। दोस्तों इस दिवस का चयन एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था जिसे तुंगस्का घटना के नाम से भी जाना जाता है। 30 जून 1908 ईस्वी को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में तुंगस्का नामक स्थान के ऊपर एक विशाल अंतरिक्ष पिंड वायुमंडल में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर दिया था। दोस्तों एस्ट्रॉइड का नाम सुनकर मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि एस्ट्रॉइड अर्थात क्षुद्रग्रह होते क्या है। श्रोताओं क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के समय बची हुई चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती है। अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ क्षुद्रग्रह ऐसे भी हैं जिनकी कक्षाएं पृथ्वी के पास से गुजरती हैं। इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। वैज्ञानिक लगातार इन वस्तुओं पर निगरानी रखते हैं। दुनिया भर की वेधशालाएं और अंतरिक्ष एजेंसियां आधुनिक दूरबीनों तथा कंप्यूटर प्रणालियों की सहायता से ऐसे पिंडों की पहचान और ट्रेनिंग करते हैं। दोस्तों वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का प्रमुख संदेश प्लैनेटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉइड इंपैक्ट हैजार्ड्स यानी कि ग्रह रक्षा और क्षुद्रग्रह टकराव के खतरे पर केंद्रित है। दोस्तों एस्ट्रॉइड हमारे सौरमंडल के इतिहास का जीवित प्रूफ है। इनके अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अरबों वर्ष पहले ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था और हमारा ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। दोस्तों आज के चर्चा में इतना ही। चलते हैं मासिक स्तंभ फोन इन की ओर जहां हम आपको सुनवाते हैं कुछ श्रोताओं से की गई बातों को और उनके पसंदीदा गानों को। फोन इन कुछ बातें कुछ गाने में आपका स्वागत है।
9: जी नमस्कार।
8: तो अपना परिचय दे।
9: सर मैं सुजीत राय जिला भागलपुर बिहार के कर रहा हूँ।
8: जी और आप क्या करते हैं सुजीत जी?
9: सबसे ज्यादा तो म्यूजिक से लगाव रखता हूँ और म्यूजिक सुनना मेरा हॉबी है और मैं कर सिंगिंग।
8: अच्छा तो अभी मौसम का हाल से तो आप वाकिफ होंगे।
9: ये तो आपने सही कहा सर। और मैं बताऊँ की आज ही न्यूज सुन रहा था तो
8: जी
9: ठंड में और कंकड़ी बारिश के आसार बन रहे हैं लेकिन हमारे
8: जी
9: बिहार में और

0: यूपी में बारिश हो नहीं रहे हैं।
1: जी, मौसम काफ़ी ही गर्म हो चुका है
0: जी
1: और गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। तो
0: जी
1: कुछ आप लोगों को सुझाव दे सकते हैं कि इस गर्मी से वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, जिस तरह से
0: जी
1: आप खुद को
0: देखिए
1: किस कैसे गर्मी से बचाते हैं।
0: जी, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान करके चलिए, अभी क्या है ना कि हीट वेव ज्यादा हो रहा है,
1: जी
0: तो इसमें लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें।
1: जी
0: अगर ज्यादा जरूरी है तो आप निकलें तो चेहरे पे मास्क लगाएं और साथ में पानी की बोतल रखें,
1: जी
0: और समय समय पर जो पेय पदार्थ है जैसे ग्लूकोज वगैरह का सेवन करते
1: जी
0: रहें।
1: ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, मतलब उनके शरीर में प्रचुर मात्रा में पानी रहे और पानी की कमी ना
0: जी
1: हो।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी काफी अच्छा सलाह दिया आप। तो सुजीत जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: सर आपके कार्यक्रम में आज मैं कॉल किया हूँ तो मुझे एक पुराने फिल्म याद आ रही है, फिल्म है दिल किसको दूँ।
1: इस फिल्म से कौन सी गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: एक गीत है ना रफी साहब और उषा खन्ना की, इसमें आवाजें हैं,
1: जी
0: गाने के बोल हैं, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, फिर
1: जरा अगर आपको याद हो तो कुछ आप गुनगुना देंगे।
0: आने लगा याद।

0: फोन इन कुछ बातें कुछ गाने में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी बोलिए सर जी।
0: तो अपना परिचय दे।
1: मेरा नाम फिरोज शेख है
0: जी। और कहाँ से हैं आप?
1: भागलपुर बिहार से हैं सर
0: जी। तो फिरोज जी, अभी मौसम का कैसा अंदाज लग रहा है आपको?
1: क्या बोले सर जी, मौसम तो बिहार की है, बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: अच्छा,
1: बिहार क्या है, इतना है कि मत बोलिए, पंखा भी चल रहा है, गर्मी भी लग रहा है, बहुत बेचैनी है भाई। क्या बोले सर जी आप
0: जी। तो इस मौसम में अपने आप को किस तरह से आप बिल्कुल जो है सही तरीके से रखते हैं, जिससे कि कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करने पड़ता?
1: सबसे पहले तो ये करते हैं कि धूप में नहीं जाते हैं
0: जी,
1: पानी पीते हैं
0: जी जी,
1: नींबू पानी या बोतल में ग्लूकोज वगैरह डाल करके उसको दुकान ले जाते हैं।
0: अच्छा,
1: पीते रहते हैं।
0: हाँ, जी जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपने सेहत का आप ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए हाइड्रेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ग्लूकोज लें, या फिर ORS हो तो ORS पिएं, ताकि जो है आपके शरीर में सोडियम का लेवल बना रहे। तो फिरोज जी, आप अपना कुछ मन पसंदीदा फरमाइश कर सकते हैं, आप किस तरह का गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना
0: जी
1: अफगान जलेबी, ये नया गाना है सैफ अली खान का जो फिल्माया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी,
1: वो गाना हमें अच्छा लगता है
0: जी। जरूर हम आपको वो गाना सुनवाएंगे
1: जी।
0: जी आकाशवाणी में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्ते सर जी, बोलिए बोलिए।
1: फोन इन कुछ बातें कुछ गाने में आपका स्वागत है। अपना परिचय दे।
0: मैं सेगांव बुल्ढाणा महाराष्ट्र से संतोष काळे बात कर।
1: तो सर वहाँ का मौसम कैसा है?
0: सर जी अभी बारिश चालू है, जिम जिम जिम जिम जिम जिम जिम।
1: अच्छा, जिम जिम बारिश चालू है। तो इस अवसर पे आप किस तरह का गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: सर जी मैंने एक ओल्ड इज गोल्ड गीत लाया है
1: जी।
0: गीत है, फिल्म का नाम है शादी के बाद। ये फिल्म 1972 में रिलीज हो चुकी है सर।
1: ओके, का कौन सा गीत सुनना आप पसंद करेंगे?
0: गायक है उसके लता मंगेशकर जी और महेंद्र कपूर जी है। बोले देख री देख नजरे एक एक से एक, ये गीत सुनने का है सर जी।
1: जरूर हम आपको ये गीत सुनवाएंगे। आकाशवाणी में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर जी। जय जवान जय किसान।

Thank you.

कुछ गड़बड़ घोटाला है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मासिक स्तंभ में फ़ोन इन कुछ बातें कुछ गाने। दोस्तों, चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट डेली त्रिविया की ओर। डेली त्रिविया में आज का सवाल है, आकाशवाणी के किस कार्यक्रम को भारत का सबसे पुराना लगातार प्रसारित होने वाला रेडियो कार्यक्रम माना जाता है? श्रोताओं, आप इस पर विचार करें, हम इसका जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। दोस्तों, आज के फन फैक्ट है, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के एटम्स कभी ना कभी किसी तारे का हिस्सा रहे होंगे? विज्ञान के अनुसार कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे कई तत्व जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, उनका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले तारों के अंदर हुआ था। जब वे तारे विस्फोट हुए, तब ये तत्व अंतरिक्ष में फैल गए और बाद में इन्हीं से ग्रह और जीवन बने। दोस्तों, आज

के फन फैक्ट में इतना ही। चलिए जानते हैं कुछ हालिया घटनाक्रमों को। हाल ही में भारत सरकार नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान संग्रह शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आज के समसामयिकी में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में कारगर साबित होता है। दोस्तों, डेली त्रिविया में पूछे गए सवाल का जवाब है, न्यूज़ बुलेटिन आकाशवाणी के कार्यक्रम को भारत का सबसे पुराना लगातार प्रसारित होने वाला रेडियो कार्यक्रम माना जाता है। ये 1930 के दशक से चला आ रहा है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपना सुझाव हमें मेल या पत्र द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर आदमपुर भागलपुर। हमारा पिन कोड नंबर नोट करें, 812001। आप हमें ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, phairbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहें, सुनते रहें आप युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब दें अपने रेडियो दोस्त आमिर को इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नासिर फराज ने इसके बोल लिखे थे। आवाज़ थी जुबीन नौटियाल और पलक मुच्छल की, और इस गीत को संगीत बद्ध किया था राजेश रोशन ने। फिल्म काबिल के इस गीत के साथ हमने आरंभ किया है कार्यक्रम का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म खुदा हाफिज़ का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना विशाल मिश्रा, आशीष कौर और मिथुन की आवाज़ में फिल्म खुदा हाफिज़ का ये गीत। मिथुन ने इसके बोल लिखे थे और मिथुन ने ही इसे संगीतबद्ध किया था। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
4: क्रेश,
5: क्रेश
3: और बाल्टी बॉय।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म काइट्स का ये गीत। नासिर फराज ने इसके बोल लिखे थे, राजेश रोशन का संगीत था, के की आवाज़ थी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं लाइफ इन ओ मेट्रो फिल्म का ये गीत। इस गीत की बात करें तो इस गीत को गाया है सोहम चक्रवर्ती और साथियों ने। शहीद कादरी ने इसके बोल लिखे हैं और इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कार्यक्रम का आखिरी गीत भी है। इसे हमने लिया है फिल्म मर्डर से। इस गीत को गाया है आमिर जमाल ने, अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया है और इसके बोल लिखे हैं सईद कादरी ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोता बंधुओं और किसान भाइयों और बहनों को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण में एक वार्ता। विषय है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य। वार्ताकार हैं वारिस हुसैन। आज संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुलहरी में गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो नाटक। नाटक का शीर्षक है अकल का ताला। लेखक है महेंद्र मयंक और प्रस्तुत करता है शंकर कैमूरी। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अंगिका लोकगीतों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजे बिहार और 10:30 पर आप सुनेंगे गीत गजल कार्यक्रम भावगीत।

अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों और बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर हम लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक भेंटवार्ता सुनेंगे आप। विषय है स्तन कैंसर। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर अर्चना झा और भेंटकर्ता है नाओमी शांति हेमब्रम। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान। प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका प्रतिभा सिन्हा की प्रस्तुति सुनेंगे आप।

7:20 पर आप सुनेंगे काव्यांजलि में कवि पुष्प कुमार राय की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान जानेंगे कुछ जरूरी सूचनाएं, जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कल प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार सुनील कुमार मिश्र की प्रस्तुति। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोकगीत के कार्यक्रम में गायक कलाकार कन्हाई प्रसाद गुप्ता के गाये लोकगीत सुनेंगे आप। तत्पश्चात 10:45 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चले आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

कल दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता लेकर आएंगे हम। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप। 1 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में गायक कलाकार उदय कुमार के गाए लोकगीत। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रविंद्र संगीत में गायिका लोपमुद्रा मित्रा की प्रस्तुति। कल संध्या 5 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक जगत। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुलहरी में गायक कलाकार ज्ञानी लक्ष्मण सिंह वेदी की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गजलों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार।
1: सब भाई का अखलू के भी नमस्कार, लाखों भाई अपनों को नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अखलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब बढ़िया छे हो, चकाचक छे हो, अपनों बताओ।
0: सब बढ़िया और कुशल मंगल हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं अखलू भाई। और इसमें हमारी सरकार भी हमारे विकास के लिए, हमारी रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मतलब हर तरीकों से हमारी सहायता करती रहती है। और हमारा भी फर्ज है कि हम सब मिलकर सभी कार्यों में सहमति के साथ साथ दें।
1: हाँ,
0: और इसी क्रम में अकलू भाई, हमारे विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय भाग 3 जो कि 2025 से 30 है लाया गया है।
1: यानी कि 7 निश्चय भाग 1 और भाग 2 है पूरा हो चुका है।
0: बिल्कुल।
1: ओकरो बाद जे छे 7 निश्चय 3 शुरू होलो छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इस 7 निश्चय में अगले 5 वर्षों में राज्य को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य रखा गया है अकलू भाई। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है युवा के लिए रोजगार, महिलाओं के उत्थान के लिए, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए और बुनियादी ढांचे के विकास करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: और साथ ही साथ है एक व्यापक और भविष्योन्मुखी विकास रोडमैप छे के लखू भाई।
0: बिल्कुल।
1: राज्य

0: के समग्र और समावेशी विकास का सुनिश्चित करे के वास्ते 7 निश्चय 2 के सफलता के बाद ही एकरा लागू करलो गेले।
1: बिल्कुल
0: मुख्य उद्देश्य बिहार का एक विकसित राज्य के श्रेणी में लाना छे, जनक ही बतेबे करलो अपने।
1: बिल्कुल, देखिए अकलू भाई, यदि मैं संक्षेप में थोड़ा सा इनके पीछे जाना चाहूँ तो 7 निश्चय भाग 1 जो था, जो कि 2015 से 2020 में पहला चरण था, उसमें जो है राज्य की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा पर केंद्रित किया गया था।
0: हाँ,
1: और इसमें जो लक्ष्य रखे गए थे, जो संकल्प रखे गए थे, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ, एकदम जरूर।
1: जैसे कि पहला है आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा है आरक्षित रोजगार, तीसरा है हर घर नल का जल, चौथा शौचालय निर्माण, पांचवा है पक्की गली नालियां, छठा है हर घर तक बिजली, और सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े।
0: यानी कहर मतलब छे कि सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ रोजगार और सुरक्षा का भी बढ़ावा मिल रहे ठीक ना।
1: बिल्कुल,
0: और सबका अवसर मिल ले तो आगे भी बढ़ ले।
1: बिल्कुल,
0: और फैनु बहने करी का है जे 7 निश्चय 1 छले है आगे बढ़ ले 7 निश्चय 2 में, जेकरा की दूसरा चरण भी कहलो जाए छे।
1: बिल्कुल,
0: और एकरो समय छले 2020 से 2025। आ एकरम की किछले बात हो बता जरा सा।
1: देखिए, इसमें जो संकल्प लिए गए थे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला, और दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता, और सातवां जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा।
0: सोचो कितना अच्छा अच्छा बात एकरा में रखलो गले और ओकरा पर अमल कर लके तब बिहार आगे बढ़ी रहलो छे। है साथ लेके चली के रहा युवा का, युवा शक्ति का, साथ में लेके चली के रहा तो सशक्त महिला का, यानी कि महिला का सशक्त बनल के, सक्षम बनल के, होनी सनी अपनो पर खड़ा होले, और आज देखो कि बिहार के प्रगति में होनी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी रहलो छे पुरुष के साथ। आरो ओकर बात की होले कि खेत तक सिंचाई के पानी, खेत अगर फसल लेते तो गड़बड़ न हो वास्ते है दूसरों चरण में जैसे खेत तक सिंचाई के पानी का पहुँचे लग गए, ताकि
1: बिल्कुल,
0: जब फसल को पानी मिलते, साफ पानी मिलते, तब फसल लहलहते ठीक ना।
1: बिल्कुल,
0: फिर स्वच्छ गाँव होता, समृद्ध गाँव होता, और फिर जब वो गाँव समृद्ध होते तो साथ साथ शहर भी समृद्ध होते, स्वच्छ होते और विकसित होते।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो तीसरा निश्चय है भाग 3, जो कि 2025 से 30 है, जैसा कि आपने बताया, भविष्योन्मुखी विकास के लिए ये एक रोड मैप है, और इसके जो 7 प्रमुख संकल्प हैं अकलू भाई, पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय,
0: दोगुना रोजगार और दोगुनी
1: आय, और दूसरा है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान।
0: देखो लाखों भाई, एकरे से संबंधित छे, जना कि एकीकृत सब बात बतिए दलो, दुगुना रोजगार होते तो दुगुना आय होते, युवा के कौशल विकास और स्वरोजगार के साथ साथ आय में वृद्धि हुआ, यह लक्ष्य रखलो गेलो छे एकरा में ना। और दूसरा बात छले समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के में भी नया नया चीज स्थापना करना छे, निवेश का बढ़ावा देना छे, आरु जे बंद उद्योग छे ओकरा भी चालू करना छे, यानी कि उद्योग भी जब अच्छा अच्छा लगते जे बंद उद्योग छे हो फैनूस चालू होते तो यहाँ करो आदमी को रोजगार मिलबे करते, तो जे यहाँ से पलायन हो रहा छे, जे युवा यहाँ से पलायन करके दूसरों जगह जा रहा छे कमावे ला, वो यहीं पर रहते तो ओकरो कुछ पैसा हाथ में ते, कुछ पैसा रोकते, कुछ पैसा खर्चा करते और ज्यादा से ज्यादा वह बचत करेला सीखते।
1: फैनु
0: साथ ही साथ है जे भाग 3 छे 7 निश्चय के, एकरा में कृषि पर भी ध्यान दे लगलो छे, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत जे छे वो कृषि प्रधान देश छे और बिहार तक खास करके कृषि प्रधान छेबे करे, तो कृषि में प्रगति प्रदेश के समृद्धि। अब देखो एक जना मखाना हो गए, डेयरी हो गए आरो उच्च शिक्षा के ढांचा कभी मजबूत करे के लक्ष्य रखलो गेलो छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फाइनो छले ओकरा में कोन चीज की उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, हेन बतेलो छलो लखो भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य यानी स्कूली आरो उच्च शिक्षा के ढांचा कभी मजबूत करे के लक्ष्य है, सात निश्चय भाग तीन में रखलो गेलो छे। आरो सबसे ज्यादा जरूरी चीज की छे अपनो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर अच्छा होता हूँ, सुलभ होता हूँ तो जीवन भी सुरक्षित होता हूँ, तो यही वास्ता एक स्वास्थ्य के प्रति भी जैसे ध्यान रखे के बात कहलो गेलो छे। यही वास्ता कहलो गेलो छे है भाग तीन में सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, यानी प्राथमिक आरो माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा के व्यापक विस्तार की बात एकरा में कहलो गेलो छे।
1: बिल्कुल
0: ओकरो बाद आवे छे मजबूत आधार
1: आधुनिक विस्तार,
0: राज्य में बुनियादी ढांचा जना कि बुनियादी ढांचा जानवे करो सड़क बिजली पानी है ऐसी चीज होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: एकरो विस्तार हो रहलो छे आरो होते आरो जे जहां तक नई सड़क पहुंचलो छे, जहां तक बिजली नई पहुंचा पा रहलो छे, जहां तक साफ पानी नई पहुंचा पा रहलो छे, वहां तक भी पहुंचावे के लक्ष्य एकरा में रखलो गेलो छे। जबकि कोना कोना में बिहार के सड़क पहुंची जते, पक्की सड़क पहुंची जते, बारहमासी सड़क पहुंची जते, बिजली पहुंची जते, पानी पहुंची जते, त यहां करो प्रगति कोई रोक पारते हो नहीं है ना, है अपने आप जे छे विकसित राज्य के दर्जा में आबे करते, यही लक्ष्य रखलो गेलो छे।
1: और अंत में जो है ये सब लक्ष्य प्राप्त करके सबका सम्मान जीवन आसान करना हमारा लक्ष्य रखा गया है।
0: तो सभी के सम्मान में महिला के सशक्तिकरण और गरीब परिवारों का प्राथमिकता एकरा में देलो गेलो छे।
1: बिल्कुल
0: तब महिला जब सशक्त होते, गरीब परिवार जब सशक्त होते, जब गरीब परिवार के आय बढ़ते तो जीवन आसान हो जते, और जब जीवन आसान हो जता तो समझिला के जीवन के पहिया जे छे वो एकदम दौड़ा लगते।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इन सारे संकल्पों से अकलू भाई विकसित भारत 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। और विकसित भारत 2047 जो है भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में यानी कि 2047 तक जब भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस राष्ट्रीय अभियान के तहत जानते हैं अकलू भाई देश के 30 से 40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और सभी नागरिकों के लिए उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। और इस परिकल्पना में विकसित भारत के लक्ष्य में छोटे छोटे स्तरों पर भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि देखिए जी राम जी अधिनियम 2025। अब ये क्या है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 जो है ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित एक कानून है अकलू भाई, जो पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था और 1 जुलाई 2026 यानी कि कल से मनरेगा का ही यह नाम बदलकर जी राम जी अधिनियम रखा गया है।
0: कुछ विशेष है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो की विशेष है मनरेगा के जो नाम है बदली कर नया नाम दे लगलो छे, एरम की विशेष है जरा यो बता दो।
1: बिल्कुल। देखिए मनरेगा और जी राम जी में मुख्य अंतर यह है कि मनरेगा केवल एक मजदूरी आधारित योजना थी अकलू भाई, जबकि जी राम जी रोजगार के साथ साथ कौशल विकास और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण पर केंद्रित एक उन्नत ढांचा है। मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक रोजगार प्रदान किया जाता
0: है। मनरेगा में चले
1: हाँ
0: कम से कम 100 दिन के रोजगार मिलते हैं।
1: बिल्कुल। और यह मांग पर आधारित था, लेकिन जी राम जी रोजगार में दिनों की संख्या को बढ़ाकर 100 से 125 कर दिया गया है और यह आवंटन आधारित है। जो केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, इसमें कृषि और ग्रामीण उद्यमिता से भी जोड़ा जाता है।
0: यानी देखो 25 दिन ज्यादा हो गए रोजगार,
1: बिल्कुल
0: तो 25 दिन ज्यादा अगर आदमी कमेते है तो ओकरो स्थिति तो छावे करते,
1: बिल्कुल। और मनरेगा में जो है कि अकुशल मजदूर की मजदूरी 100% तक जो है कि उनका खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन जी राम जी में केंद्र और राज्य का जो है अनुपात में जो है कि खर्च उठाना है, इसमें 60% केंद्र सरकार इसका खर्च उठाती है और 40% राज्य सरकार, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में

0: और पूर्वोत्तर राज्यों में 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। तो मनरेगा में कृषि सीजन में ब्रेक का कोई प्रावधान नहीं था। ये कृषि सीजन में ब्रेक क्या होता है जानते हैं अकलू भाई?
1: नहीं बताया जरा।
0: जी राम जी में पहली बार यह प्रावधान जोड़ा गया कि जिसके तहत राज्य सरकार बुआई के समय और फसल कटाई के समय में 60 दिनों के लिए ग्रामीण रोजगार के कार्य जो होते हैं उस पर रोक लगा देती है, ताकि किसान को अपने कृषि कार्य के लिए मजदूर आसानी से मिल सके।
1: और देखो है जे मनरेगा छले और अब जे ओकरो नया नाम हो गेले जी राम जी जे
0: योजना
1: योजना
0: कल से ये लागू हो जाएगा।
1: अच्छा तो है जे योजना छे वो खास करके गांव में चलेलो जाय छे और वहीं करे स्थानीय लोग जेकरा की रोजगार नहीं मिल पारलो छे तो वह जाय ओकरा में काम करे छे, एकरा वास्ते ओकरा जॉब कार्ड भी बनवावे पड़े छे जे की स्थानीय स्तर पर बनवावे छे, नहीं तो फिर ऑनलाइन भी ओकरा बनवा पारे छे।
0: बिल्कुल
1: आरो हो जॉब कार्ड लाइक करी का तो है जैसे मनरेगा के तहत या जी राम जी जे योजना छे एकरो तहत काम पावे के काम पावे सके छ। आरो अगर काम नहीं पेते तो ओकरो भत्ता भी ओकरा मिले छे।
0: बिल्कुल
1: आरो सबसे बड़ो बात छे कि गांव पंचायत के आसपास के ही क्षेत्र में काम मिले छे। आरो सबसे बड़ो बात है प्रकृति के साथ साथ काम चले छे, जना खाद कुया के हो गेले सौंदर्यीकरण करना ना, कहीं पेड़ पौधा लगाना छे, वृक्षारोपण करना छे, सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण करना छे, या फिर कुछ आरु छी सड़के बनाना छे, गांव के विकसित विकास करना छे,
0: पशुपालन भी किया जाता है।
1: तो है इसनी काम जो ले है बुनियादी काम होले और एकरा में वहीं के लोग काम करे छे, तो काम कर लो जल्दी से घर भी आबी गलो, तो सब कुछ आसान हो गलो छे। और जब सब कुछ आसान हो जाए छे तो जैसे प्रगति भी आसान हो जाए छे। बस ध्यान देर बात छे कि सरकार ने जे भी योजना चलेलो छे हो योजना का जानो समझो बुझो और ओकरा जैसे ओकरा अगर तोरा लायक छे तो तो ओकरा मा अपना काम ढूंढो और आगे बढ़ो, समृद्ध हुआ। जबकि आदमी समृद्ध होते तो परिवार समृद्ध होते, परिवार समृद्ध होते तो गांव खुशहाल होते, और जब गांव खुशहाल होता तो समझी ला कि अपना है बिहार तो विकसित और समृद्ध तो होवे नहीं करते हो। जो पुराना बिहार छले वह समृद्ध और विकसित होते ओकरो ज्यादा आगे बढ़ते तब भारत भी आगे बढ़ते। और हम उस कार्यक्रम में आगे बढ़े छे, सुने छे कुछ संदेश, ओकरो बाद फेनू सुनबे छमासा
0: गीत।
2: Choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
4: सुनो ना।
3: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: हाँ बिल्कुल।
1: देखिए अकलू भाई, प्रथम मास आषाढ़
0: देखो
1: अभी
0: एना तऽ पहला महीना जे होइ छै ओ तऽ चैत होइ छै,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जे छमासा चौमासा गीत सुनै छै तऽ ओकरामे जे छै है जे छमासा सुनलियै एकरामे अखाढ़सँ शुरू होलै, यानी
1: हाँ
0: अखाढ़, सावन, भादो,
1: भादो,
0: आसीन,
1: हाँ
0: कार्तिक,
1: बिल्कुल
0: अगहन, ऐसे
1: बिल्कुल
0: चललै। आरो अभीके जे है जे महीना छै अखाढ़के महीना छै, सावनके महीना होइ छै, ऐसनी
1: बिल्कुल
0: वर्षाके झमाझम पानीके महीना होइ छै।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इस महीने में अक्सर ऐसे हिंदी में इसको जून जुलाई में अक्सर ये आता है ना, और इसमें बारिश की शुरुआत हो जाती है
0: और
1: और
0: कहीं कहीं
1: इस
0: तो मानसून भी आ गेलो छे।
1: बिल्कुल। और
0: देखिए
1: ये
0: छो पिछला सप्ताह से देखो दिना में धूप करथो और सुतला राती एक गमछा पानी बरसात हो ऊपरो से,
1: बिल्कुल
0: लागे छे
1: और
0: कि भगवान ने कत्ता पानी संजोए के रखलो छे, सब रात बेरात जखनी मन होय तखनी उजली दे छे।
1: बिल्कुल
0: खैर
1: और
0: है तो प्रकृति के नियमे छे, गर्मी छे ते एकरा से बचे वास्ते जे छे पानी भी पड़ना जरूरी छे।
1: और
0: और
1: ये कृषि
0: खास करी
1: कार्य
0: का
1: के लिए
0: अभी
1: भी,
0: के महीना में अखाड़
1: हाँ
0: सावन भादो पानी नहीं देते, वर्षा नहीं होते तो की होते हो, हाँ जो
1: बिल्कुल
0: फसल छे, धरती छे, सब जो पानी मांगे रहे छे ओकरो के जैसे पूरा करते तुम।
1: बिल्कुल। तो कृषि कार्य के लिए भी बहुत सारे फसलों के लिए ये उपयोगी होते
0: और
1: हैं।
0: खाली कृषि कार्य वास्ते नहीं, खाद कुइयां जे सुखी रहलो छे, भूजल स्तर जे नीचा जा रहलो छे, वहां तो पानी चाहिए पानी ऊपर आवे वास्ते, ये
1: बिल्कुल
0: वास्ते पानी बहुत जरूरी छे। आरो है पानी वास्ते जे छे है महीना बनलो छे अखाड़ सावन भादो आसीन जे भी
1: बिल्कुल
0: छे।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इतना अच्छा अभी गीत सुनलिए, अब गीत के बाद चलो थोड़ा सा कहानी के दुनिया में चले छे। और आज खनी कहानी सुना रहलो छे लेखक छे कृष्ण मोहन तिवारी जी।
2: आइ तऽ चुनिया आरो मुनियाके खुशी रो ठिकानो नहीं छै, कहने कि आइ तऽ शुक्र छिकै आरो फगुआ चारे दिन रही गेलो छै। ये ले लो आवत तऽ बाबू अयबे करते आरो घरों भरी ला कपड़ा सनी लानबे करते, कहने कि चमरू कक्का के जायखनी भी गोदी पर चढ़ी कर झुनिया ने कही दिले छे कि आपकी फगुआ में हमें हौ फसना ही वाला फ्रॉक नहीं लेबो, आपकी फूलो फूलो बाही पर आरो आगू में बड़का बड़का फूल वाला फ्रॉक लेबो, नहीं तो गोदी से नहीं उतरबो। ई कही कर झुनिया चमरू कक्का के छाती में सटी गेले, बेटी के बासल ने हृदय पर अधिकार करी ललके, लेकिन चमरू कक्का के जाना जरूरी छे। यह ले लो झुनिया के हर बात में हों हों करी आरो बड़का फिचकारी के लोभ दे गोदी से उतारी के कामों पर चलो गेले। लाल काकी अपनों मुँह से तो नहीं कुछ बोले, मतर की मने मन मगन छे कि हमरो लाल काकी आरो सुनी आ लाल कपड़ा सनी लौनबे करते। सहिए में पर्व तिहारी में लाल काकी लाल कपड़ा पिन्ही के बैठी जाए छे तो दुर्गा माय रंग लागे छे। यही ले लो चमरू कक्का ने दान दहेज के लोभ छोड़ी कर हिनका से बिहा करी लिया छे। घरों में थोड़ो विवाद तो होले फेनू सब ठीक ठाक हो गए। लाल काकी खूबे पढ़ी छे आरो गांव के बच्चा सनी के भी मंगनी में पढ़ाए छे आरो कहे छे कि एक टा सबके पढ़ना जरूरी है, आवे हम सबके पढ़ाए देवो। गांव के पढ़वा बाबू सनी भी लाल काकी से हिसाब सीखे छे। चमरू कक्का के फगवा में घर आवे के खुशी में गांव वाला के भी कम दुख नहीं छे, कहने कि वहाँ से नया नया होली आरो पछियारा रंग रंग बिरंगों के झूमर गावे छे, जकरा सुनी के बुढ़वा से बच्चा तक गदगद होकर झूमे लागे छे। चमरू कक्का पानी वाला जहाजों में काम करे छे, हौ जहाज सामान लाधी के कहियो पटना आरो कहियो कलकत्ता जाए छे। अब की फगवा में बुद्धन कक्का के कहला पर चौपालों ला बड़का रेडियो लाने के बात छे। धुरखेल फगवा बीती गए मतर की कक्का नहीं अले। चमरू कक्का के घरों में आने के दुख पूरे गांवों भरी के होले। यही ले लो गांवों के सभी लाल काकी का धीरज बन्हाय ले आवि गेले। मुखिया जी बोले हेकरा में घबराए के कोनो बात नहीं छे, भोरे मदना आरो महेशो के पता लगाए लेलो पटना भेजी देले छिए। यहाँ तो गाँव में हो छै कि हर दुख सुखों में एक दूसरों के हो जाए छै। यहाँ में जात धर्मों के मना नहीं रखे छै। मुनिया धुनिया के मनों के अरमान धरले रही गेले। लाल काकी ने काका के कलकत्ता से कानों के करण फूल आने कहले छले। वहाँ सोनो अच्छा आरो सस्ता मिले छे। आज देखो मंगला माय के करेजो ऊंचो हो गेले। जे अपनों दुखों से सुखों से खुशी ने दूसरा के दुखों से खुश हो छले। नित पर्वो में हुनको सुहाग आरो सोनो कहाँ गुम हो गेले। हुनका आँखी पर अंधार हो गेले। विनोदी काका ने तो चौपालों में खोली के कही दिलके गांव के हर आदमी हीरा छके। गांव के ई इंजोरिया अंधरिया में डूबी गेले। हुनको जहाज को घाटों में लसकी गेले। मालिक जहाज ठीक करे वाला के ले कैले। मालिक बोले जब तक है सामान से खाली नहीं होतो तब तक केना ठीक होतो। चमरू के साथ तीन आरो लड़का छले। बोरा उठाए के डर मुँह चोरा के बैठी गेले। मालिक चमरू है तीनों गंजा के चिलम चाटे वाला छिको। हेकरा हौ हिम्मत कहाँ से होते। आवत तो ही जे कर चमरू कक्का ने कहलके। एकरा में घबरा के कोई बात नहीं छे। है तो हमें सब उतारी देवे। आरो देखते देखते चमरू कक्का हौ तीनों सौ बोरा उतारी दिलके। है देखी मालिक ने चमरू कक्का के अपने छाती से लगाए लेलके। आरो बोलले कि तुहाँ कसरत करे छे आरो दारू गंजा नहीं कुछ पिए छे तब ने तोरा इतना साहस आरो इतना बोल छो। पढ़ुआ न सही में कहे छे कि बिना थकानों के लक्ष्मी के मुस्कान कहाँ। आज तोहरो थकान ने हमरो भाग लक्ष्मी के बचाए दिलके। प्रेम आरो मित्रता आदमी के सबसे बड़ा गुण छके। आरो है गुण तोहरा में छो। आज से तुह मजदूर ने हमरा भाई छिक आरो हमरा हमरा मालिक नहीं कहा। जहाज ठीक कराए आरो माल पहुँचा के आपकी होली तोहरे साथ तोहरे गाँव में मनेबे। मालिक के है बात आरो व्यवहारों से चमरू कक्का के श्री राम आरो निषाद राज के आद आबि गेले। जेकरा से आँख छलछला गेले। हिना लाल काकी के जाने बतलैलके वह महंगा लगले। काली माय के जोड़ा पथा पीर बाबा के चादर आरो नहीं जानो कहाँ की कबूल होते। बड़की माय जिनका देवी देवता पर पूरा भरोसा छले हुनियों निराश होकर बोलले कि दुखिया के दुखी देख कर डरी जाए छे देवता भी। प्रेमिया माय बोलले कि सभे जितले के ढोलिया छके दुखिया के कोई नहीं। लाल काकी कानी का कहलकै हौ जहाजों के साथ हमरो भाग के सूरज डूबी गेले। बड़की माय नहीं जानो कि कहिया हमरो भाग के भोर होते। यह भोरो के आशा में लाल काकी अचरा पसारी देहरी पर देखी रहलो छले। इतने में सामान से भरलो एक चार चकवा आवी के द्वारी पर रुकी गेले। जेकरा से मालिक आरो चौपा

0: निकालो ले बड़का रेडियो हाथों में ले चमरू कक्का उतरले। लाल काकी लोर भरलो आँखी से चमरू कक्का के देखलक, फेरू लाजो से अचरा लेकर मुँह झाँपी लेलक। ये में कत्ते प्रेम आरो करुणा छले शायर कोई नहीं बुझा पा रहा। यहाँ लाल काकी मुँह से तो नहीं नजरों में कतना वेदना आरो कतना ओलहना छले। है चमरू कक्का ने बुझी के क्षमा के ले लो अपनो आँख नीचा करी लेल के। कक्का ई सुनी के गाँव भर के लोग जमा हो गेले। मालिक ने हाथ जोड़ी के माफी मांगल के आरो कहल के होली में चमरू के हमें रोकी ले ले छे। चमरू भाई के उपकार से हमें आरो हमरा माल भरलो जहाज बची गेले। आज चमरू भाई के तरफों से पूजा आरो भंडारा होते। मुनिया आरो झुनिया जे अभी तक ठकवैली ठाढ़ी छले लाल काकी के कहला पर दोनों ने दोनों के आवि के गोरा लागल के दोनों ने दोनों बहन के गोदी में उठा के चूमी लेलक।
1: हाँ अखलू भाई, देखिए अंगिका में हम लोग का अंग जनपद में जो ये कहानी है कितना अपनापन बनाता है, अपने परिवार की बच्चों की याद दिलाता है, अपने कार्यों की याद दिलाता है।
2: देखो कहानी कविता जो होइ छे
1: बिल्कुल
2: जे जगरा साहित्य कहलो जाए छे
1: वो
2: समाज के दर्पण होइ छे, आईना होइ छे।
1: बिल्कुल,
2: समाज कहना होइ छे और कहना होना चाहिए है वहाँ को जैसे साहित्य ने बतावे छे।
1: और
2: साहित्य का पढ़ला सा सुनला सा लिखला सा जैसे बहुत सीख भी मिले छे। जना कभी है जे कहानी सुन ली हम उसने भी कृष्ण मोहन तिवारी जी से कितना अच्छा कहानी लगले और कितना अच्छा सीख दिल के कि नहीं समाज में सब का मिली के रहना चाहिए, कोई जैसे आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब बराबर छे और जब सब मिली के रहते तो सब अच्छा भी होते और
1: साथ में त्योहार भी मनाएंगे।
2: अब देख लो है अभी चली जैसे अखाड़ लेकिन कहानी चलाऊं फगुआ के तो की करवो ये वास्ते कहे जहां न जाए रवि वहां जाए कवि है अखाड़म फगुआ के जैसे आवी गले सुख। तो खैर चलो एने अच्छा अच्छा कहानी कविता लायक हमसनी आवे छे जे कि जे कुछ न कुछ सीख दे छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आरो आवे जे चलो कार्यक्रम में आगे बढ़े छे और सुंदर रंग एकटा विवाह गीत सुने छे।
1: बिल्कुल आइए सुने।

0: बिल्कुल अकलू भाई, देखिए, अरे अरे, बसवा यानी विवाह गीत का जो है कि आनंद ही अलग है।
1: विवाह गीत की हर गीत के अपनो अपनो अलग आनंद छे, बस जरूरत छे तब मन से खुश रहे के।
0: बिल्कुल
1: परिस्थिति कोनो भी रह, दुख कतनो बड़ा रह, लेकिन मन से अगर तुम तो खुश रहो तो हर दुख जे छे भागलो फिरते अपनो से।
0: बिल्कुल
1: आरो केना के जानबे करे छे कि रात के बाद दिन हो छे तो दुख के बाद भी सुख होबे करते। यह
0: बिल्कुल
1: वास्ते मन से प्रसन्न रहो आरो जे छे अपनो हर काम एकदम मजबूती के साथ करते रहो। और
0: बिल्कुल
1: एकरा वास्ते सबसे ज्यादा जरूरी चीज छे कि मौसम के सूचना जे छे वो समय पर मिलता रह, तब
0: बिल्कुल
1: ये तो खेत बाग खलिहान लह लहते। तो
0: बिल्कुल
1: चलो
0: बिल्कुल
1: झट से हम असनी मौसम जे छे मौसम सूचना आरो कृषि संबंधित समसामयिक सलाह अपनो श्रोता भाई बहन के दे दी छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 1 से 5 जुलाई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज आरु चमक के साथ आंधी चले आरु हल्का सा मध्यम वर्षा हुए के अनुमान छे।
0: बिल्कुल
1: जिला के 1 या 2 स्थान पर भारी वर्षा हुए के भी संभावना छे, तो थोड़ा सचेत रह सभे।
0: बिल्कुल
1: ज्यादे ज्यादे तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आरु कम से कम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोरे भोर 80 से 85%, जबकि दुपहरिया में 25 से 30% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वी हवा चले के भी अनुमान छे।
0: बिल्कुल, और वहीं पे धान फसलों के लिए कुछ समसामयिक सुझाव हैं अकलू भाई, कि वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्में का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करें। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और वहीं पर अरहर की फसलों के लिए सलाह है कि उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बहार पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 एवं राजेंद्र अरहर 2 किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम गंधक का भी प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर जो है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
1: और वहीं पर गाय के पशुपालक बंधु वास्ते सलाह देल जाए कि गला घोटू आरो लंगड़ी बीमारी से बचाव के वास्ते टीकाकरण करावे के जरूरत छे।
0: बिल्कुल,
1: सभ्य दुधारू पशु में टीकाकरण जरूर से जरूर करायला। नया गेहूं के भूसा के खिलावे से पहले लगभग 2 घंटा पानी में ओकरा फुलाव आरो 50 ग्राम खनिज मिश्रण आरो 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला करी का देना छे।
0: बिल्कुल,
1: और देखो मौसम चेतावनी भी जरूरी छे। ता आंधी तेज हवा और वर्षा फसल का नुकसान, फूल या फल झड़ना, कीट रोग प्रकोप और सब्जी और बागवानी फसल के क्षति का क्षति पहुँचा सके छो और पशु पर भी तनाव बढ़ा सके छो। तो थोड़ा सचेत रहो, खड़ा फसल में सिंचाई अभी जो छो रोकी दहो और खाद कीटनाशक के छिड़काव जहिया जौन दिना आसमान साफ रहते वही दिना करना छे। तो ऐसी बात का ध्यान रखो किसान भाई पशुपालक भाई, तो थोड़ा
0: बिल्कुल
1: फायदा जरूर होते और सब कुछ बढ़िया रहते, खेत भी बढ़िया रहते, फसल भी बढ़िया रहते और पशु भी बढ़िया रहते। और जब सब कुछ बढ़िया रहते तो अपना तब बढ़िया रहवे करवो
0: और साथ में आप झूमने भी लगेंगे। तो आइए झूमर एक गीत हम लोग सुनते हैं।

0: बड़ा है निमन झूमर लगले।
1: बिल्कुल
0: देखो झूमर तभी अच्छा लगे छे जबकि मन प्रसन्न रहत हो।
1: हाँ, बिल्कुल, ना बिल्कुल
0: तभी जे सब जे छे गीत ला सुने भी मन लगे छे।
1: हाँ।
0: कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा छे तो ओकरो सुने मन लगे छे। तो आपनो जे है कार्यक्रम आकाशवाणी भागलपुर के द्वारा अभी चली रहो छे ग्राम जगत खेती गृहस्थी के यो त वैसनी कार्यक्रम में से एक छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो सब श्रोता भाई बहनी अभी बड़ा मन सुनी रहो छे और गीत सुनी कर झूमी भी रहो छे।
1: बिल्कुल
0: अब थोड़ा सा आगे बढ़े छे और अब कुछ काम और बात हो जाए।
1: बिल्कुल देखिए अपने के देश में जो है कि किसानों का देश कहा भी जाता है और है भी। तो किसान अपने कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन के भी कार्य करते हैं। तो पशुपालन कार्य भी उनके साथ अच्छा हो, खेतीबाड़ी भी अच्छा हो, उसकी देखरेख करने के बाद होता है। तो पशुओं की देखरेख भी हमें समय समय पर करना होता है।
0: और आजकल तो नया नया किस्म के जैसे एक उद्योग भी मान लो जाए छे, जना देखो मुर्गी फार्म चलाना, डेयरी फार्म चलाना है ऐसे ठीक ने, एक खेत के साथ साथ चलावे छे किसान भाई ना, तो दो पैसा ज्यादा कमावे छे। तो मुर्गी फार्म जो किसान भाई चला रहे होते तो ओकरा में केना करके टीकाकरण करना छे है सबसे ज्यादा जरूरी चीज छे, तभी तो मुर्गी बचलो रहते।
1: बिल्कुल
0: तो मुर्गी में अभी रक्षक टीकाकरण है विषय पर विस्तार से जानने चाहिए है पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से वार्ता कार्य के जियाउल हौदा।
2: भाइयों मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम अपनी मुर्गियों को संक्रामक एवं जानलेवा बीमारियों से दूर रखेंगे तो हम इस व्यवसाय से उतना ही अधिक लाभ अर्जित कर पाएंगे। मुर्गी पालन में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो असाध्य होती हैं और उसका एकमात्र विकल्प टीकाकरण ही होता है। इसलिए हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए एवं नियमित रूप से अभिरक्षक टीके लगवाने चाहिए। किसान भाइयों मुर्गी के बच्चे में 0 से 5 दिन के अंदर मैरेक्स वैक्सीन का टीका 0.2 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे लगाना चाहिए। रानीखेत बीमारी के विरुद्ध टीका 2 से 5 दिन के अंदर RDF1 स्ट्रेन 1 बूंद बच्चों के आँख में एवं नाक में डालना चाहिए एवं रानी खेत बीमारी से पूर्ण रूप से बचाव के लिए R2B स्ट्रेन टीका मुर्गियों में 70वें दिन 0.5 मिलीलीटर दवा मांस में देना चाहिए। मुर्गियों में गंभीर बीमारी से बचाव के लिए IBD टीका 15 से 21वें दिन के भीतर 2 बूंद आँख में या नाक के माध्यम से देना चाहिए एवं पुनः 35वें दिन IBD इंटरमीडिएट स्ट्रेन पानी के साथ देना चाहिए। किसान भाइयों आप अपनी मुर्गियों को चेचक से बचाव के लिए 45वें दिन फाउल पॉक्स का टीका 0.2 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे दें एवं इसका बूस्टर टीका 85वें दिन 0.2 मिलीलीटर मांस में अवश्य दें। किसान भाइयों अपनी मुर्गी को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस से बचाव के लिए IBT का इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस टीका पानी में मिलाकर मुर्गियों को पिलाएं। किसान भाइयों आपको अपनी मुर्गियों को इन्फेक्शियस कुराइजा बीमारी से बचाव के लिए 0.5 मिलीलीटर टीका चमड़ी के नीचे मुर्गियों को लगाएं। फाउल कोल्ला से बचाव के लिए फाउल कोल्ला का टीका 0.5 मिलीलीटर प्रति मुर्गी मांस में अवश्य लगवाएं। किसान भाइयों मुर्गी में टीकाकरण के संदर्भ में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। उसमें सर्वप्रथम टीका बनाने के उपरांत 1 से 2 घंटे के अंदर आप उसका उपयोग कर लें। टीकाकरण का कार्य कभी भी बीमार पंछियों एवं महामारी फैली हो तो उस समय कदापि ना करें। टीकाकरण के समय एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। टीकाकरण हमेशा सुबह में करना अच्छा रहता है। किसान भाइयों टीके के बारे में सही जानकारी जैसे उसका स्रोत, बैच नंबर, नाम नोट अवश्य कर लें। टीका के निर्माता कंपनी के निर्देशों का पालन करना चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर पशु चिकित्सक की सलाह से कार्य करना चाहिए। रानीखेत बीमारी के विरुद्ध जब कभी R2B स्ट्रेन का प्रयोग करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि मुर्गियों का वजन 600 ग्राम से अधिक हो। टीकाकरण के उपरांत कुछ प्रतिक्रिया या तनाव हो सकता है, इससे बचने।
1: बिल्कुल, और इस प्रकार जो है कि किसान अपने मुर्गियों के टीकाकरण से उनको बचा सकते हैं। और आज के कार्यक्रम का अब समय यहीं पे संपन्न होता है अकलू भाई। सबको लाखों का नमस्कार,
0: साथ में अकलू के भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ हैं और शासन पूरी तरह विफल है।
1: मानसू का हत्या जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। झारखंड के पुलिस के वैन से निकाल करके अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पर चाकू से गोल गोल करके मार, आप समझ सकते हैं जमशेदपुर जो शांति प्रिय जिला के रूप में जाना जाता था, आज जमशेदपुर का ये हालत है, तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या हाल है।
0: इधर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए झामुमो नेत्री और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि विपक्ष आगामी चुनावों को देखते हुए बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है।
2: भाजपा के यहाँ ये स्वभाव है आरोप लगाना। अभी हाल के दिनों की बात करती हूँ, रांची में जब आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ तो कितनी जल्दी पुलिस ने हमलावर को पकड़ा, जो कि शायद भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कभी इतनी जल्दी इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसी तरह से हर मामले में यहाँ की पुलिस लगातार सक्रिय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए।
0: राज्य को कल 4 नए सूचना आयुक्त मिलने जा रहे हैं। लोक भवन के दरबार हॉल में सुबह 11:30 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाएंगे। कार्मिक विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 16 नेक नागरिकों को सम्मानित किया गया। चाईबासा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इन गुड समैरिटन्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इन नागरिकों ने सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को गोल्डन आवर के दौरान अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। समिति ने अब हर महीने ऐसे 5 नेक नागरिकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची, लातेहार, लोहरदगा और खूंटी सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 और 2 जुलाई को राज्य भर में भारी बारिश का दायरा और बढ़ेगा। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। स्वर्ण पदक विजेताओं में इताशा कपूर, अनाया खलखो, विशाखा थापा और पलक साहू शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान, 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक होल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल। झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे, 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक वार्ता। विषय है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य। वार्ताकार है वारिस हुसैन।
4: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर जीवन का सबसे बड़ा खजाना कहाँ छुपा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की। भूमध्य रेखा के आसपास फैले ये उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल रीजन्स प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार हैं और हमारी इस खूबसूरत धरती के पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में साल भर गर्म तापमान और भारी बारिश औसतन 200 मिलीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष का आदर्श संतुलन होता है। लाखों वर्षों तक बिना किसी बड़े मौसमी उथल पुथल या ग्लेशियर के प्रभाव के इन क्षेत्रों ने प्रजातियों के पनपने के लिए सबसे बेहतरीन परिस्थितियां प्रदान की हैं। यही कारण है कि यहां दुनिया की सबसे बड़े वर्षावन जैसे अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका में मौजूद हैं, जहां समान आकार के सामान्य जंगलों की तुलना में 10 गुना से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कांगो बेसिन अफ्रीका में स्थित सघन जंगलों वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान

विस्तृत खुले मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु होती है। हमारे भारत के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के जंगल इसी क्षेत्र में आते हैं। भारत के इन क्षेत्रों में वर्षा 100 से 200 मिलीमीटर तक होती है। यह सदाबहार जंगलों की प्रजातियों की भारी संख्या दर्शाती है। उत्तर पूर्व भारत की उष्णकटिबंधीय वनस्पति जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र शामिल हैं। आमतौर पर ये जंगल 100 मीटर अर्थात 3000 फीट तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती मानसूनी वन, तटवर्ती वन, दलदल और घास के मैदान शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन के साथ साथ उष्णकटिबंधीय मानसून वन भी पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय नम चौड़े पत्ते के वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन भी कहा जाता है। ये क्षेत्र अपनी अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, विविध वन्य जीवों और लगातार गर्म जलवायु के लिए जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसे अक्षांशीय जैव विविधता प्रवणता, लैटिट्यूडिनल बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण निरंतर गर्म तापमान, भरपूर वर्षा, स्थिर जलवायु, अधिक सौर ऊर्जा और प्रजातियों के विकास के लिए लंबा समय विकासवादी समय मिलना है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड, बर्फबारी या भीषण सूखा जैसी मौसमी उथल पुथल नहीं होती। वर्ष भर समान गर्म और आर्द्र जलवायु रहने से पौधों और जीवों के निरंतर विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण यहां सूर्य की रोशनी सबसे अधिक और सीधी प्राप्त होती है। इससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर उच्च होती है, जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन के आधार को मजबूत करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले वर्षा वनों और सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों का घर है। ये क्षेत्र अत्यधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे उच्च उत्पादकता होती है। यहाँ जैव विविधता पर्यावरण संतुलन में मुख्य भूमिका निभाती है। उष्णकटिबंधीय वन विशाल कार्बन सिंक होते हैं, जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन, ये क्षेत्र पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का लगभग 25% से अधिक हिस्सा उत्पन्न करते हैं, जो श्वसन चक्र और पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। पारिस्थितिक स्थिरता, इकोलॉजिकल रेजिलियंस, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजातियों की प्रचुरता, रिचनेस के कारण खाद्य श्रृंखला फूड चेन और खाद्य जाल फूड वेब अत्यधिक जटिल और स्थिर होते हैं। इससे तंत्र किसी भी जैविक या मौसमी संकट का आसानी से सामना कर लेता है। जल चक्र और वर्षा, घने पौधे, वाष्पोत्सर्जन, एवपोट्रांसपिरेशन द्वारा बादलों के निर्माण और वर्षा में सहायता करते हैं, जिससे वैश्विक और स्थानीय स्तर पे मौसम चक्र का जुड़ाव बना रहता है। प्रकृति का यह संतुलन आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि चिकित्सा क्षेत्र में भी हम इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधों और जड़ी बूटियों पर निर्भर हैं। दुनिया की कई प्रमुख जीवन रक्षक दवाइयाँ इन्हीं उष्णकटिबंधीय पौधों से प्राप्त होती हैं।

0: लेकिन श्रोताओं, आज यह जैविक विविधता एक भारी संकट में है। इंसानी लालच, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, अंधाधुंध शहरीकरण और प्रदूषण ने इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हम हर दिन कई प्रजातियों को हमेशा के लिए खो रहे हैं। यदि हम इन क्षेत्रों को बचा नहीं पाए तो पर्यावरण का ऐसा असंतुलन पैदा होगा जिससे सूखा, बाढ़ और भयानक बीमारियां जन्म लेंगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के भूभाग का लगभग 7% हिस्सा है, लेकिन यहाँ दुनिया की लगभग 90% प्रजातियाँ निवास करती हैं। इस समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने और पर्यावरण संतुलन को सुनिश्चित करने में मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। वनों की कटाई से तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आवासों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे संवेदनशील प्रजातियों के पलायन और उनके विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन व्यावसायिक लाभ के लिए पौधों और जीवों का अत्यधिक शिकार और दोहन किया जा रहा है, जो खाद्य श्रृंखला और पोषण चक्रण को बाधित करता है। विश्व स्तरीय कानून और संधियां, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992 में रियो डी जेनेरियो में शुरू की गई, यह सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका मुख्य लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण, उसका सतत कंटिन्यूअस उपयोग और संसाधनों से प्राप्त लाभों का समान वितरण है। क्यूमिंग, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन द्वारा 2022 में अपनाई गई इस योजना का लक्ष्य 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और तटीय क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से संरक्षण करना है। यह उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शक है। सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य 14 जलीय जीवन और 15 स्थलीय जीवन सीधे तौर पर जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर केंद्रित हैं। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन दशक 2021 से 2030 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा शुरू किया गया यह अभियान पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करने और वनों की कटाई को रोकने पर जोर देता है। समुदाय आधारित संरक्षण, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, वनों के आसपास रहने वाली स्थानीय जनजातियाँ और स्वदेशी समुदायों के अधिकार की रक्षा करना, क्योंकि वे सदियों से प्रकृति के वास्तविक संरक्षक हैं। भारत के प्रमुख कानून और नीतियाँ, नेशनल लॉज ऑफ इंडिया, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत का प्रमुख कानूनी ढांचा है। यह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है। इसके तहत 3 स्तरीय संरचना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और स्थानीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज काम करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यह कानून भारत के वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, और नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के निर्माण का आधार है। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। यदि हम इन क्षेत्रों को बचा नहीं पाए तो पर्यावरण का ऐसा असंतुलन पैदा होगा जिससे सूखा, बाढ़ और भयानक बीमारियां जन्म लेंगी। आज ही अपने आसपास पेड़ लगाएं और प्रकृति को संजोने में अपना योगदान दें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण में। एक वार्ता, विषय था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन।

0: के लिए अनिवार्य। वार्ताकार थे वारिस हुसैन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: Feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें ₹250 से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424242।
5: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत
4: और इंडिया रेडियो।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य की एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जी राम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। इनमें पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनीसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित सदस्यों का कल शपथ ग्रहण होगा। परिषद के उप सभागार में अपराह्न 4 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, भाजपा नेता संजय मयूख, लोजपा रामविलास के अशरफ अंसारी और राजद के सुनील सिंह समेत 10 नवनिर्वाचित पार्षदों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य के 26 संग्रहालयों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री कुमार पटना के विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष पद पर चयनित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्य के सरकारी स्कूलों में आगामी 4 जुलाई को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। संगोष्ठी के दौरान स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और ड्रॉपआउट, सरकारी योजनाओं तथा स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि 27 जून को भीषण गर्मी और अवकाश के कारण कई स्कूलों में संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो सका था। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्य कर रहे 13 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी शिक्षकों से मानदेय की वसूली की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
1: काराकाट प्रखंड में हमारे 13 ऐसे शिक्षक थे जो अमान्य संस्थान भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा से उपाधि प्राप्त किए थे, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सभी की सेवा समाप्ति के लिए प्रखंड के जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव है उनको लिखा गया है कि अगर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अगर ये सब सेवा में है तो फिर उनको सेवा से मुक्त किया जाए और जो राशि लिए है उनकी वसूली की जाए।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी है।
2: संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध कल से हट जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर पेट्रोल या डीजल देने की सीमा समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण 12 जून से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की न्यायिक जांच शुरू की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विकास कार्यों में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है।
3: सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की। बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही। सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रहेगी।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त तैयारी की है। सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से संग्रहित करने की व्यवस्था की है।
1: बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, जिससे कि अल्पवृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें।
0: दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। इसके कारण कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई में आज सुबह तेज बारिश हुई। पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 1 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून यानी आज तक निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों, न्यायाधिकरण में शामिल अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सेवानिवृत्त हो गए। अपने विदाई समारोह के तहत उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए उनके सफल भविष्य की शुभकामना दी। आकाशवाणी पटना में कार्यरत वरीय अभियंता सहायक विपिन चंद्र गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई कार्यक्रम में केंद्र अध्यक्ष एचडी सिडाम समेत अधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें सफल और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। शेखपुरा जिले के कई पंचायत में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर आयोजित विशेष शिविरों में वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। रोहतास जिले के बौलिया रोड स्थित सुराज संस्था के कार्यालय में एचआईवी एड्स की ऑनलाइन काउंसिलिंग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने एड्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बताई। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिले में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिवहर के एडीआर भवन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से स्थायी लोक अदालत के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने किया। मुंगेर के स्थानीय प्रेक्षागृह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज कन्या जन्मोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपणिकर ने इसका शुभारंभ किया। सारण जिले के चिरांद में आज 19वें चेतना महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव के दौरान गंगा पूजन, महाआरती, चित्र प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुपौल जिले

के स्थानीय मेडिएशन सेंटर में स्थायी लोक अदालत की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। लोक अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अदालत के क्षेत्राधिकार और कार्य प्रणाली की जानकारी दी। सीवान पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 लोगों को उनके गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन लौटा दिए। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने वास्तविक मालिकों को उनके फोन सौंप दिए। अरवल जिले के कोनिका गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट कर दिया। उत्पाद अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मौके पर मौजूद शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत आमथुआ में जागृति योजना 2025 के तहत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके में गंगा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा राज्य की एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण कटिहार शिवहर सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: AIR at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले के भगवानपुर प्रखंड के मुंडेश्वरी धर्मशाला परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कैमूर जिले के लिए लगभग 196 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत वाली 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मां मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात तक पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास की नीति पर कार्य कर रही है। इधर कैमूर जिले के सभी 146 पंचायतों में 28 जून को पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाकर गांवों के समग्र विकास को गति देना, आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। जिले के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मोहनिया प्रखंड की उसरी पंचायत में हुआ, जहां प्रभारी मंत्री संजय सिंह टाइगर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और जन भागीदारी के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी रही। विभिन्न विभागों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।

और प्राप्त शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की। कैमूर जिले में मुहर्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में संपन्न हुआ। जिला मुख्यालय भभुआ

0: बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने समीक्षा के दौरान कार्य में शिथिलता पाए जाने पर 72 पंचायत रोजगार सेवकों और 6 कार्यपालक कार्यक्रम पदाधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उनके मानदेय एवं वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बीते दिनों जिले में जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि पिछले 3 महीने में जिले में बाल श्रम से मुक्त कराए गए 13 बच्चों का सफल पुनर्वास किया गया है। परवरिश योजना के तहत 404 बच्चों तथा प्रयोजन एवं स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 248 बच्चों को नियमित सहायता दी जा रही है। वहीं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के माध्यम से अब तक 73 बच्चों को दत्तक ग्रहण कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को जिले में मौसम में अचानक बदलाव आया और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। कृषि कार्य के लिए तैयार धान के बिचड़े को इस वर्षा से विशेष लाभ मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत कैमूर जिले के 1,18,350 किसानों के खातों में 23,67,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने योजना के प्रति संतोष व्यक्त की। भभुआ प्रखंड के सिक्ठी गांव में आयोजित सखी वार्ता कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सामाजिक कुरीतियों, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज निषेध, बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा तथा साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम के जिला प्रबंधक कुमारी प्रियंका राज ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी आह्वान किया। भभुआ प्रखंड कार्यालय के पुराने भवन एवं परिसर में अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आवासीय परिसर के निर्माण की तैयारी शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने लगभग 1 एकड़ 42 डिसमिल भूमि के लिए प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैमूर जिले के न्यायपालिका, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पतंजलि परिवार तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अनेक स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए गए।
1: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।

0: It's a productive stroke, plays it down into the hands of the fielder in the mid-wicket region, and no runs taken.
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए नज़ीर की लिखी गज़ल।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म कुछ कुछ होता है का शीर्षक गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है जतिन ललित का, इसके बोल समीर ने लिखे हैं और इसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म कोयला का गीत। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है, इसके बोल लिखे हैं इंदिवर ने और इसे गाए हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने।

0: feels effortless with the Grand Vitara. Because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे

0: दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म राज का ये गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने, नदीम श्रवण का संगीत है, समीर ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया हुआ, समीर का लिखा हुआ ये गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म तेरे नाम का शीर्षक गीत है ये। आइए सुनते हैं ये लोकप्रिय गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
4: Nexa.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म तुम बिन का ये गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फिल्म ताल का शीर्षक गीत। अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ है, एआर रहमान का संगीत है, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म सावन द लव सीजन का ये गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है साजिद वाजिद का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमूई हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाती सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जाम मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन 2 अहम मौजूआत से मुताबकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्कीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मौशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाए। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम एसनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए।
1: बस 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्ति करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलोहमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मंजूरी दे दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए थी, जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रुपए मालियत की हो गई है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतल्लिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। खत्मी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पहले दिन वोटरों को 1,68,200 से ज्यादा फॉर्म्स तकसीम किए गए। 7,600 से ज्यादा इंदराज के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दिल्ली में 13,033 पोलिंग बूथ्स हैं जो 1,45,10,298 वोटरों का इहाता करते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज इंदराज का अपना फॉर्म दाखिल किया और कौमी राजधानी के सभी अहल वोटरों से नजरसानी के जारी अमल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरें और उन्हें अपने मुतल्लिका बीएलओस के हवाले कर दें। उन्होंने इस मुहिम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सही और दुरुस्त वोटर फहरिस्त एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद होती है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तस्ना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तस्ना को आज तक के लिए मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्को है कि इस रियायत से उन सनतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल, खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवा

0: समाज के लिए एक उदाहरण है, जो शादी के बाद भी अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखती है, उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती है। सही कहा है कि बेटा तभी तक बेटा है जब तक उसकी शादी ना हो जाए, लेकिन बेटी हमेशा बेटी रहती है।
1: हाँ बिरजू भाई, अगर गुड़िया ना होती तो हमारे जीने की आस खत्म हो गई रहती। हरी बेटी है जो हम जिंदा है। अरे बेटी तो दो दो खानदान को संभालती है, लेकिन लेकिन बेटा में वो बात है बिरजू भाई? एकदम नहीं, एकदम नहीं बिरजू भाई। बिरजू भाई, हम कहते हैं बेटी पर ही तो हम जिंदा है। हाँ बिरजू भाई, हाँ
0: सच कहूँ तो हमें अपने बच्चों से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हरिया, ना उम्मीद रखूंगा ना दुख होगा, बस बस इतनी इच्छा है कि बच्चे जहाँ रहें खुश रहें स्वस्थ रहें। बस अब चलता हूँ हरिया, फिर मिलूंगा।

0: गुड़िया माँ,
1: कहो क्या कहते हो?
0: ये बरसात है कि काल बरस रहा है?
1: ठीक के कहते हो गुड़िया के बाबू, हमको तो छोटका का फिकर लगा है। पता नहीं भागलपुर पहुंचा भी होगा कि नहीं।
0: फालतू फिकर मत करो, वह नालायक तो सांझे पहुंच गया होगा। इस समय तो दिल्ली वाली रेल में आराम से पसरा होगा। बाप माय गया जहन्नुम में, तनिक भी फिकर है उसको?
1: अरे लेकिन मैं तो माय हूं ना।
0: चाहे बेटा सपूत हो या कपूत, हमको लगता है गुड़िया माय, मेरा दम्मा फिर उखड़ गया है।
1: अरे नहीं नहीं नहीं,
0: देखो देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, दोनों में से कोई बेटा लायक नहीं निकला। बड़का तो पहले से दिल्ली में है, छोटका भी आज भागी गया, रह गए हम दोनों परानी और तुम्हारी दोनों बिगड़ल बहू। एक तो हमारी कमजोर हड्डी और ऊपर से दम्मा का प्रकोप।
1: क्या हो गया, क्या हो गया?
0: जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
1: ऐसा मत कहो गुड़िया के बापू, कुछ नहीं होगा तुमको। और फिर फिकर काहे के लिए करते हो? अरे हम भी कुमार की बेटी है, तुम्हारा सारा काम अब मेरे जिम्मे, मैं खुद चाक चलाऊंगी, मिट्टी सानूंगी और रंग रोगन भी करूंगी, तुम चिंता क्यों करते हो? गुड़िया के बाबू बस आराम करो, तुम सो जाओ तुम।
0: गुड़िया माय
1: सो जाओ,
0: सुनो सुनो, ये तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत जो संहार कर रखे थे वो बेटी के पास चुपचाप रख दिया है। नहीं तो तुमरा नालायक बेटा क्या एक को पैसा बचने देता? जबरदस्ती छीन लेता तुमसे। भगवान की दया है कि इतने बड़े घर में गई है वो। बस एक वही है जिस पर भरोसा है। हे भगवान, हे भगवान, हे राम,
1: बैठ जाओ गुड़िया के बाबू, बैठ जाओ। ये क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया? हे भगवान, इतनी रात को इस पानी बरसात में अब मैं किसके पास जाऊं, किसको बुलाऊं? मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं?
0: तुम बचाओ, रुको रुको गुड़िया माँ, आओ तुम मेरे पास बैठो।
1: हाँ गुड़िया माँ, बैठती हूँ,
0: मेरे पास बैठो। हाँ तुम मेरे पास बैठो।
1: अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मरी गले हो गुड़िया के बाबू, अब हम केकरा भरोसे जीवे हो? हमरा छोड़ी के चल लो गेले, आओ गुड़िया के बाबू, हमरा छोड़ी के चल लो गेले हो।

देखना छोटकी, गुड़िया आ गई है, कोई न कोई चाल जरूर चलेगी, बुढ़िया को उसकाएगी। जिस दिन से हम दोनों गोतनी आई हैं, बुढ़िया उसी की बात पर चलती है रे। हम लोग तो बस घर की नौकरानी बनकर रह गए हैं, गुड़िया तो कानून की पोटली है। कब तक बेटी काम आएगी।

0: माँ, तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती माँ। कितनी बार तुम्हें समझाया पर मानती ही नहीं हो। अब भोगो, दोनों भाभियां पक्के के घर में रहती है और तुम्हें गोहाल में डाल दी है। छी छी छी, यहाँ कितनी बदबू आती है। अब देखती रहो यहाँ कुड़िया फुचिया, गंदरा बुथरा पे सो, अगर कहीं डिबरी गिर गई तो इसी में जलकर मर जाओगी। दोनों भाभी तुम्हारी जान लेकर रहेगी। जिंदगी भर बाबू जी तोड़ मेहनत किए, इन लोगों का भरण पोषण किए, पर परिणाम क्या निकला? यही नर्क की जिंदगी। बाबू जी तो हम सबको छोड़कर चले गए, अब तुम धूप की तरह जल रही हो। अब हरियाली आने वाली नहीं है माँ, अब हरियाली आने वाली नहीं है।
1: गुड़िया, जब साईं ही छोड़कर चला गया तो अब किसको दोष दूं बेटा?
0: उपाय है माँ, मैं जैसा कहूँ तू वैसा ही कर, सब ठीक हो जाएगा। अब अकल से काम लेना होगा, फिर देखना, दोनों बहुएं तुम्हें तो तलहत्ती पर रखेंगी, तलहत्ती पर। कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हें।
1: समांग रहा नहीं, एक बाल्टी पानी भरने को कहती हूँ तो दोनों आना कानी करती है। तिरस्कार से जीवन चल रहा है बेटा, किसी तरह दो जून खाना दे देती है, बस वही काफी है मेरे लिए।
0: रो मत माँ, रो मत। देखो देखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तुम्हारी तो इतनी सेवा करेगी ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जब तक जियोगी आनंद से रहोगी। समझती क्या है दोनों अपने आप को?
1: कौन सा करिश्मा बेटी, कौन सा करिश्मा करोगी?
0: देखो माँ, मैं एक ताला लाई हूँ, तुम्हारा बक्सा कहाँ है?
1: यहाँ लो। हाँ, लो
0: लो, ये पोटली सहज कर रखो, ये पोटली सहज कर रखो, और जोर जोर से बोलना ताकि दोनों बहुएं जग जाए, और इसको बक्से में रखना और ये ताला लगा देना। हाँ सुनो, किसी को चाबी नहीं देना, हमेशा साड़ी में बांध कर रखना। हाँ सुन, दो चार रोज में इस पोटली को उझल देना, फिर गिनना और पुनः सबको समेट कर बक्से में रख देना और ताला लगा देना।
1: ठीक है बेटी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी, वैसा ही करूंगी बेटी।
0: जब तक तुम जिंदा रहोगी ना, ये बक्सा नहीं खुलेगा।

0: ए जी,
1: कहो रमा।
0: जानते हैं, जब से गुड़िया आई है रात भर माए बेटी सोती नहीं है, गुतुर गुतुर करती रहती है। बक्सा को

0: आपकी बहन जब भी आती है बुढ़िया को कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। आपके दिल्ली जाने के बाद ऐसा एक भी महीना नहीं गुजरा जिस महीने वो नहीं आई हो। और जानते हैं, मैंने कानों सुनी एक बात बताती हूँ। ऐसा सुना बेटी अपनी माँ को शिक्षा दे रही थी कि माँ ताला बंद कर रखना बक्से में, नहीं तो भाभी सारा माल चुरा लेगी। चाबी को बक्सा बंद करने के बाद केठी में बांध कर रखना। अब बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ?
1: देखो रमा, अगर माँ का जेवरात ऐसा कौड़ी लेना ही हो तो माँ की सेवा जी जान से करो, उसके दिल को जीतो। अरे जिंदे में नहीं तो मरने के बाद तुम्हारा ही ना होगा।
0: बुढ़िया भी मरेगी भी क्या? कितनों को मार कर मरेगी बुढ़िया। अरे अमृत पी के आई है, बीमार भी कभी पड़ते नहीं देखा।
1: खबरदार रमा, दोबारा ऐसी बात की तो तेरी जीभ निकाल लूंगा। अरे जो माँ बाप हम लोगों को पाल पोष कर बड़ा किया उसी की निंदा करती हो। अरे अरे जी नहीं गल जाता है ऐसी बात करते हुए। फिर कभी ऐसी बातें मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? वह दिन भूल गई जब हम दोनों भाई दिल्ली चले गए थे, बाबूजी के पीठ पे कौन था? कोई नहीं, अकेले बाबूजी स्वयं मिट्टी सान कर लौंदा बनाकर बर्तन में रंग रोगन करके घर को चलाया। माँ बेचारी देह धून कर बाबू का साथ दी, लेकिन तुम लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। तुम दोनों आराम से पक्के के मकान में रहती हो और माँ बेचारी को दरवाजे पर सुलाती। दोबारा बुढ़िया मत कहना, माए खातिर शर्म आती है क्या? अरे सेवा करो, सेवा मेवा मिलेगा, पुण्य कमाओ, आशीर्वाद मिलेगा माँ का। हम दिल्ली से क्या लाए? कुछ नहीं, सिर्फ सीख कर आए मेरे को तेरे को। अगर बाबूजी इलाज नहीं कराते तो हम दिल्ली में ही मर जाते, गंदी बस्ती में रहकर प्राण त्याग देते। शर्म नहीं आती? कहती है बुढ़िया मरती भी नहीं है, अमृत पी कर आई है। दोबारा ये सब सुनना नहीं चाहता हूँ, समझी रमा?
0: अच्छा छोड़ो भी, लेकिन देखो जी अब हम भी तुम्हारे साथ दिल्ली जाएंगे।
1: अरे मेरे साथ कहाँ जाएगी, हम तो नरक में रहते ही है, यमुना नदी के किनारे पुस्ता पर, वहां तो मच्छर भूंज देता है, एक रात भी नहीं काट सकोगी, समझी? यहाँ जिस तरह रहती हो, खुला दरवाजा खुला आंगन, वहां थोड़े मिलेगा। सभी जगह दुर्गंध ही दुर्गंध है। दिल्ली अमीरों की जगह है, लाखों रुपया महीना कमाने वाले को अपना घर तक नहीं है, फ्लैट में रहता है, चार दीवारी में बंद रहता है, वहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। हम जैसे मजदूर वर्ग के लोग तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं।
0: सच में?
1: उससे तो अच्छा है अपना गांव। जितना मेहनत वहां करते हैं अगर उतनी ही मेहनत लगन से गांव में करे तो सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं।
0: तो फिर ऐसा करो जी, अब दिल्ली मत जाओ, यही दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी कर लेंगे।
1: हमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की जो बाबूजी से हुनर नहीं सीख पाए, जवानी के तैश में एक न सुनी, नहीं तो आज हम बेकार नहीं रहते। पुश्तैनी काम आज जरूर काम आता, चाक चलाते घायला बर्तन बनाते कितना अच्छा रहता। ठीक ही कहा है, दूर का ढोल सुहाना होता है।
0: जाने भी दो, पर हिम्मत मत हारो, इतने आदमी गाँव में ही रहकर अपनी जीविका चलाते हैं। हमारे पास तो दो कट्टा की बाड़ी है, इसमें सब्जी उगाएंगे। और देखो आजकल सब्जियां भी तो कितनी महंगी बिकती हैं। दो कट्ठे की जमीन में हम लोगों का भरण पोषण तो अच्छी तरह से हो ही जाएगा जी।
1: तुम्हारी सोच बिल्कुल सच है, अब हम दिल्ली नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, बहुत भोग लिया नरक को, फिर तो ये अपना ही काम है, स्वाभिमान से जिएंगे और फिर माँ की भी सेवा करते रहेंगे, क्यों? बचा हुआ धन तो हम ही लोगों का होगा, आराम से जिंदगी कटेगी।
0: बिल्कुल।

0: उठिए माँ जी, सुबह हो गई है। अच्छा। कुआं पर पानी भी भर दिया है माँ।
1: अच्छा।
0: नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, तब तक चाय नाश्ता बनाती हूँ।
1: देखो बहू।
0: हाँ माँ।
1: अब मैं किसके लिए जीती हूँ? गुड़िया तो एक रोज दो रोज आती है फिर चली जाती है, वो तो दूसरे घर की हो गई ना। अमीर भी है, बड़े घर में उसकी शादी हुई है, हम लोग उसकी बराबरी में कैसे आ सकते।
0: हाँ माँ ठीक कहती हैं आप, बेटी कब तक काम आएगी। सास बहू का ही संबंध अच्छा रहना चाहिए ना, तभी घर स्वर्ग बन जाता है।
2: ठीक ही कहती है भाभी, अब तो लगता ही नहीं है कि वही घर है। माँ की सेवा जितनी तुम करती हो ना भाभी, बिरले किसी किसी घर में होता है।

0: हैं।
1: अरे गुड़िया, आज बहू को क्या हो गया है जो इतनी खातिरदारी कर रही है? लगता है मेरी गुड़िया का जादू चल गया। भगवान भला करे मेरी बेटी का।
2: अच्छा माँ, एक बात पूछूं?
1: पूछ।
2: तुम्हारी खातिरदारी हो रही है या नहीं? मेरा जादू चला या नहीं?
1: अरे वाह बेटा, वास्तव में तुम्हारे पास अकल का ताला है, नहीं तो हम इन लोगों के व्यवहार से तो मर ही जाते। सचमुच हमारी गुड़िया बेटी बहुत अकलमंद है। अब तो हम एक काम भी नहीं करते हैं, पहुएं करने ही नहीं देती हैं। सुबह शाम एक ग्लास दूध अवश्य देती हैं पीने को। गुड़िया पता है अब तो दर्पण भी चमकने लगा, थोड़ी देख देख थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। सब तुम्हारी कृपा है बेटा।
2: अच्छा माँ, ये बता बक्सा दो चार रोज में खोलती हो या नहीं?
1: वाह बेटा, बस उसी का तो कमाल है, जोर जोर से गिनती हूँ जैसा तुमने कहा था, फिर बक्सा बंद कर गेठी में चाबी बांध लेती हूँ। मेरा तो भाग्य ही बदल दिया तुमने बेटा, नहीं तो मुझे गंधरौना पर फेंक देती ये दोनों बहुएं।
2: अरे नहीं। अच्छा चलो, अब तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है, मुझे बहुत खुशी है माँ, मुझे बहुत खुशी है।

0: दूर मरती भी नहीं है बुढ़िया, ना को दम कर दी है, कभी माथा दबो कभी पैर दबो, फरमाइश पर फरमाइश करती रहती है। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा इससे? बेटी सिखा पर आकर जाती है और माथे पर मेरे पड़ गए है। मैं तो आजीज आ गई हूँ।
1: अरे कोई है, कहाँ गई सब, मर गई क्या? दोनों बहुए कहाँ है? मर गई, बाप रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
0: क्या?
1: अरे अब नहीं बचूंगी, अब नहीं बचूंगी।
0: क्या
1: बुढ़िया को जल्दी खबर करो, जल्दी खबर करो।
0: मुंह जरा सा खोलिए,
1: पानी दो। दम घुट रहा है बेटा, दम घुट रहा है। जल्दी जरा सा जी को,
0: जरा सा गुड़िया को खबर कर दीजिए।
1: अरे वाह,
0: माँ आप ठीक हो जाएंगी। धैर्य रखिए माँ, धैर्य रखिए। दबा कर
1: पहले को मिलाओ बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
2: नहीं नहीं, धीरे धीरे मर जाऊंगी।
1: बाबू मर गए, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, मैं भी मर जाऊंगी।
2: नहीं ऐसा नहीं,
0: धैर्य रखिए।

0: देख गुड़िया, माँ जब तक रही तुम्हारी भाभी जीजान से सेवा की। समय पर चाय नाश्ता खाना ना ही नहीं, कोई भी भारी काम माए को करने नहीं दी। दोनों शाम गाय का दूध देना कभी नहीं भूलती थी। माँ की जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से कटी, कभी शिकायत करने का मौका नहीं दिया। तुम तो बीच बीच में आकर देखती ही थी। अब तो बक्सा खोलो।
1: माँ का ऋण चुका दिया गया है भैया, नहीं तो आज के जमाने में कौन अपनी सास की इतनी सेवा करती है। एक बात बताओ, अगर माँ के पास कुछ नहीं रहता तो क्या होता? भाभी इतनी सेवा करती?
0: क्या कहती हो गुड़िया, आखिर हमारी माँ थी।
1: अच्छा, मान लो इस बक्से में कुछ नहीं निकले तो तुम्हें और भाभी जी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी?
0: गुड़िया, ये सब पहेली मत बुझाओ। अगर कुछ नहीं निकलता तो हम क्या करें? लेकिन तुम्हारी भाभी बराबर रात को टटिया फाड़ कर देखती सुनती थी, और माँ बोलती भी थी, सारा जेवर रुपया पैसा तो बहू की होगी, बेचारी बहू सेवा करती है।
1: देखो देखो, अभी बक्सा खोल।
0: हाँ हाँ हाँ, खोलो खोलो।
1: ये लो, देखो इस थैली को खोलो। देखा गुड़िया का खेल?
0: अरे इसमें तो सिर्फ ईटा पत्थर है, सब मेहनत बेकार गया।
2: अरे गुड़िया, शैतान।
0: अरे ये बुढ़िया तो बहुत बहुत चतुर निकली।
2: और बेटी भी कम धूर्त है।
0: हाँ।
1: अरे नहीं नहीं, ये सब मेरा खेल है, मेरा। अगर हम ये खेल नहीं रचते ना तो माँ कब का मर गई होती।

0: अब बताओ कैसा रहा ये नाटक? इसे कहते हैं अकल का ताला।
1: आप सुन रहे थे एक पूर्व प्रसारित रेडियो नाटक, शीर्षक था अकल का ताला। लेखक थे महेंद्र मयंक और प्रस्तुतकर्ता थे शंकर कैमूरी। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है अंगिका लोकगीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार।

0: लोक संग भी, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजी बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गूंजी बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी गिरामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गूंजे बिहार।
1: श्रोताओं नमस्कार। माटी की सोंधी खुशबू से ओतप्रोत गूंजे बिहार के इस भागलपुर अंक में मैं विजय कुमार मिश्र आप सभी श्रोता भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकगीत में माटी की सोंधी खुशबू होती है। लोकगीत जो कि लोक अंचल से प्रस्फुट हृदय की बातों से जुड़े हुए गीतों पर आधारित हुआ करती है। लोकगीत जिसमें प्रकृति का प्रेम है, लोकगीत जिसमें झरने की कलकल बहती हुई ध्वनि है, लोकगीत जिसमें माटी की सोंधी खुशबू है, लोकगीत जिसमें हमारे संस्कार हैं, जिसमें हमारे प्यार हैं और पूरे वर्ष भर की सारी बात हैं।

0: संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई वर्ष भर की सारी बातों के अलावे लोकगीत के अलग अलग प्रकार और अलग अलग प्रभेद में हमें कई प्रकार की बातों की जानकारी मिलती है। कहीं ये हमारा मनोविनोद करती हैं तो कहीं हमें एक बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा संदेश भी देती है जो कि हमारे जीवन से बिल्कुल ही करीब जुड़ी हुई होती हैं।
1: और एक

जी, स्वच्छता के ही सिर्फ संदेश नहीं देती हैं ये लोकगीत, बल्कि लोकगीतों में अगर कहें तो जीवन के जो भी हमारे संस्कार हैं, यानी कि 16 संस्कार की बात करें तो 16 संस्कार के अलावे जीवन से जुड़ी हुई, खास तौर से अगर कहें कि लोक अंचल से जुड़ी हुई छोटी सी छोटी बातों पर भी आधारित होती हैं लोकगीत, जो सुमधुर कंठों से प्रस्फुटित होती हैं तो निश्चित रूप से मन प्राणों को मोह लेती हैं।

अपना प्यारा ये देश भारत गांवों का देश है, संस्कृतियों का देश है। गांवों की अपनी एक अलग लोक संस्कृति है और जहां इसी लोक संस्कृति के कारण हमारी पहचान है, वहीं इसी लोक संस्कृति से प्रस्फुटित और उपजे लोकगीतों में कहीं न कहीं एक आह्वान भी है।

0: आवारा।
1: तो आइए हम भी चलें खेतों की ओर, जहां से जीवन है और है प्राण। और इससे साथ ही लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे बिहार को हम यही विराम देते हैं, आपको ये बताते हुए कि आज के कार्यक्रम में जिन कलाकारों की गायकी की खुशबू आपने सुनी, वे कलाकार थे हमारे गोल्डी कुमारी और सहेली तेज नारायण चौधरी और साथी, और रिद्धि मिश्रा और सहेली। और इसी के साथ आपका ये दोस्त विजय कुमार मिश्र भी आपसे विदा लेना चाहेगा। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामीण लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजे।

0: बिहार।
1: आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीतों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त महताब। आज फिर से आप सभी के लिए खूबसूरत फिल्मी गजलें लेकर आया हूं और सुनाने गजलों के साथ साथ उन खूबसूरत कलामों को भी जो बहुत ही खूबसूरत भाव अपने अंदर पिरोए हैं, वो सच्चा प्रेम, वो तड़प, वो समर्पण, वो अपने महबूब से बिछड़ने की जो दर्द है उसे बयां करता है। ऐसे गीत, ऐसी गजलें बहुत सारी हैं हिंदी सिनेमा में और ऐसे ही गजलों को हम आज फिर से आपको सुनाएंगे। जो पहली एक फिल्मी गजल के तौर पर ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये फिल्म मेरे महबूब का शीर्षक गीत है। इस गीत की बात करें तो महबूब से बिछड़ने के गम को बयां करते हुए इस खुशी को जाहिर की जा रही है इस गीत में कि आपसे मुलाकात तो हुई, आपसे थोड़ी बात तो हुई, कि अपनी ज़िंदगी में वो दो लोग आगे कहाँ होंगे किसी को भी नहीं पता, लेकिन किस्मत साथ हमें लेकर जाए ना जाए, लेकिन अभी हमारे पास ये मुलाकात के जो कुछ पल हैं ये बेहद ख़ास हैं, और इसी को ख़ास बनाए रखने की जो कोशिश है वो मोहब्बत को ज़िंदा रखती है। एक बड़ी मशहूर गज़ल है कफ़ील आज़ार अमरोही की, जो मैं आपको सुनाता हूँ। इस खूबसूरत गज़ल में कफ़ील भी कुछ ऐसा ही बयां करते हैं। वो कहते हैं कि एक मुद्दत से है मेरे जहन पे छाया हुआ, एक मुद्दत से है मेरी जहन पे छाया हुआ, रेशमी आंचल तेरी यादों का लहराया हुआ। एक मुद्दत से है मेरे जहन पर छाया हुआ, रेशमी आंचल तेरी यादों का लहराया हुआ। हाँ, तेरे भूले हुए वादों से कुछ मिलता तो है, हाँ तेरे भूले हुए वादों से कुछ मिलता तो है, रंगीन हसरत भरी सांसों का सवलाया हुआ। ऐ मेरी मजबूरियों नाकामियों महरूमियों, ऐ मेरी मजबूरियों नाकामियों महरूमियों, है कोई मुझसा फरेब ज़िंदगी खाया हुआ। यार, इस माहौल में जीना बहुत दुश्वार है, यार इस माहौल में जीना बहुत दुश्वार है, हर नफस बेचैन हर लम्हा है घबराया हुआ। रोज़ इस दीवार के साए में सो लेता हूँ मैं, रोज़ इस दीवार के साए में सो लेता हूँ मैं, आपसे अच्छा तो इस दीवार का साया हुआ, एक मुद्दत से है मेरे जहन पर छाया हुआ।

श्रोताओं, ये गज़ल, ये गीत हमें बताता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ पाने का नाम नहीं, बल्कि प्रिय की खुशी को अपनी खुशी मानने का नाम है। उसके हर गम में उसका साथी बनना हमारा सही काम है। प्रेमी अपने दर्द को छुपाकर अपनी महबूबा की सलामती और खुशियों की दुआ करता है। ये गीत बहुत बड़े डेडिकेशन का एक खूबसूरत मिसाल है। और ऐसे ही गीत और ऐसी गज़लें हमें अपनी ज़िंदगी में और मजबूत भी करती हैं, और कई बार हमें गीत और गज़लों के ज़रिए अपने किए गए कामों का पछतावा करने का भी मौका मिलता है। जी हाँ, एक खूबसूरत फिल्मी गज़ल मैं अभी आपको सुनवाऊंगा, जिसमें कुछ ऐसे ही भाव हैं कि ज़िंदगी भर जिस खूबसूरत दुनिया को हम बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी, और कभी ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों से ही उसे बिगाड़ भी देते हैं, और वो सफलता जो असफलता में परिवर्तित हो जाती है वो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख देती है, तकलीफ़ देती है। तो सड़कों पर भटकने के साथ साथ जब हमारी ज़िंदगी बिना उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के आगे हम बढ़ते जाते हैं, तब हमारे आसपास जो लोग होते हैं तब उन्हें हम पहचान नहीं पाते, और फिर बाद में जीवन के इस उद्देश्यहीनता की वजह से जो हमें बेचैनी मिलती है और जो हमें तन्हाइयाँ मिलती हैं वो हमें बहुत परेशान करती हैं। जैसे इस गीत में कहा गया है कि इस खूबसूरत शहर में हज़ारों घर हैं लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं, वो भीड़ में है, अकेला है। ये सिर्फ मकान की बात नहीं बल्कि उस अपनेपन और सुकून की बात है जो हम और आप तलाशते हैं, कि हम भीड़ में तो होते हैं लेकिन हमारे पास अपना कहने की कोई नहीं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त मानते हैं, लेकिन सही मायने में हमारी मुश्किल में, मुश्किल हालात में, दुख और पीड़ा के समय में हम जिससे अपने दुख को बयां कर सके या उससे जिनसे हम मदद मांग सके, ऐसा कोई भी नहीं होता। ये खूबसूरत गज़ल बताती है कि कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, हालात और तकदीर उसे उस स्थान पर पहुंचा देती, उस जगह पर पहुंचा देती जहां वो खुद भी नहीं पहुंचना चाहता था। और ये ज़िंदगी की नाकामियों, अकेलेपन और अस्तित्व की पीड़ा को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। आइए सुनते हैं फिल्म आवारगी का ये फिल्मी गज़ल, और इसे गाया है गुलाम अली ने अपने दर्द भरी आवाज़ में। अनु मलिक का संगीत है और आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम, और कार्यक्रम भावगीत में आज के अंक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त महताब। बात हो रही है खूबसूरत फिल्मी गज़लों के, उन खूबसूरत भाव की जिनमें दर्द है, जिनमें तकलीफ़ है, मोहब्बत भी है, कई बार अफसोस भी है। हर तरह के भाव इन गज़लों में, गीतों में गीतकारों और गज़लकारों ने पेश किए, उसे बयां किए हैं। अगर हम बात करें अगले गीत की या कहें फिल्मी गज़ल की, तो ये भी बड़ी खूबसूरती से अपने पछतावे को और जो उम्मीदें आने वाली ज़िंदगी से, आइंदा ज़िंदगी से की गई थी, उसको बयां करता है जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। निकाह फिल्म के इस गीत को गाया है सलमा आगा ने, हसन कमाल ने इसे लिखा है और रवि का है संगीत। इसमें बड़ी खूबसूरती से जीवन के सारे सारी उम्मीदें और सपने और प्रेम की सारी इच्छाएं जो टूट कर आंसुओं में बह गई हैं, उसे बड़ी खूबी से बयां किया गया है। इंसान जो अपने भविष्य को और सुंदर बनाने के सपने देखता है, और जब वो पूरे नहीं होते, वो सारे सपने टूट कर बिखर जाते हैं, तो उसकी तकलीफ़ क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, वो इसमें बयां किया गया है। इसी गज़ल में आगे भाव बहुत गहरे हो जाते हैं, जिसमें अपने रिश्तों में पूरी ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी निभाने के बावजूद अगर अकेलापन, दर्द और जुदाई मिले, यानी कि एक सच्चे प्रेम का अंत अगर हम देखें, तो हमेशा सुखद नहीं होता। हम ये मान कर चलते हैं कि ज़िंदगी कई बार हमें अधूरेपन में ज़रूर लेकर चली जाती है, जहाँ पर हम अपनी तरफ से ये सोचते ज़रूर हैं कि अगर हम अपनी मोहब्बत में वफादारी को कायम रखेंगे तो हमें भी उतना ही प्रेम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रेम त्याग और दुआ की अहमियत तो है ही, लेकिन साथ ही आप जितनी उम्मीद उस मोहब्बत में अपने महबूब से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत आपको मिले, उतनी ही वफादारी आपको मिले, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।

श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। आज के इस सफर में मैं था आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त महताब। आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख

0: को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of VBG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch three projects worth over 1100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44 kilometer Mansi Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passenger and freight movement in this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 station or cabin on the high-density network and highly utilized network route of Asansol Division of Eastern Railway. The special intensive revision of electoral rules has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute a pre-printed enumeration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in underway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। हम कल प्रातः 5:48 पर कल की सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अभी अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।